नमस्कार। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते ई आकाशवाणी जलंधर दा FM रेनबो चैनल है। अज बुधवार है, शक संवत 1948 दे ज्येष्ठ महीने दी 6 तारीख, तद अनुसार ईसवी सन 2026 दे मई महीने दी 27 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 हो रहे ने। साडी अज दी सभा हुण शुरू हुंदी है। FM रेनबो अपने सारे श्रोतियों का निघा स्वागत करता है।

प्रेम रस घोले काना तेरी मुरली, इस मुरली दी मिठास धुन जिहड़ी है ओह जादू है जो दुनिया दे सारे फिकर चिंतावां भुला के मन नूं प्रेम अते शांति दे रंग विच रंगा दिंदी है। तो चलो जी अगला असीं सुनदे हां गुरबाणी शब्द जिहड़ा कि है सतिंदर सिंह जी दी आवाज़ दे विच।

तुम करो दया मेरे साईं, ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं हैगे बल्कि एक अजिही अरदास है जो साढ़े भटकते हुए मन नूं सकून ते सही रस्ता दिखाउंदी है। जदों असी अपने परमात्मा नाल गल करदे हां, जदों उस साईं दी रहमत दी नज़र हुंदी है तां हर मुश्किल आसान हो जाती है। हर रास्ता लगता है कि बस ये रास्ता हुण पार हो ही जाएगा।

FM बैन 102.7 मेगाहर्ट्स ते आकाशवाणी दा FM रेनबो चैनल है। तो इस वेले साड़ी कड़ी दे मुताबिक 7 बज गए ने। हुणे तुसी सरवण कीता भगती रास्ता प्रोग्राम वंदना, ते हुण वेला हो गया है FM न्यूज़ हेडलाइंस दा।

दिल से निकले दुआ ये हमारी, हर सुबह हो खुशियों से भरी तुम्हारी, जिंदगी में आए सिर्फ प्यार के रंग, जुड़े रहो FM रेनबो के संग। तुसी ट्यून कीता है 102.7 मेगाहर्ट्ज ते, ते मैं तुहाडी अपनी दोस्त महक ते प्रोग्राम शुरू हो गए जी। तुहाडा सारिया दा फेवरेट प्रोग्राम। चलो जी, सवेर दी किरण नाल साडा भी हो गया।

दिल से निकले दुआ ये हमारी, हर सुबह हो खुशियों से भरी तुम्हारी, जिंदगी में आए सिर्फ प्यार के रंग, जुड़े रहो FM रेनबो के संग। तो सी ट्यून कीता है 102.7 मेगाहर्ट्ज से, ते मैं तुहाडी अपनी दोस्त महक, ते प्रोग्राम शुरू हो गए जी। तुहाडा सारिया दा फेवरेट प्रोग्राम। चलो जी, सवेर दी किरण नाल साडा भी हो गया चमकन दा टाइम FM रेनबो, ते मूड भी है प्राइम, जिथे नॉलेज भी मिले ते मस्ती भी साथ। शुरू हो गया जी प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग जालंधर, हर दिन एक नवी बात। तो चलो जी शुरू करते हैं आज दे प्रोग्राम नू। तो हाडी अपनी दोस्त महक आ गई है, ते हुन प्रोग्राम भी महकेगा, आड़ा दुआला भी महकेगा, पर महकाउण दे लई मेरा साथ तुहानू देना पएगा, ते साथ देण लई जी तुहानू उठना पएगा। तो लो जी दोस्तों, उठ जाओ क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो गया है। गुड मॉर्निंग जलंधर।

उठ जा जिद्दी रे, रात की चांदनी से मांगता हूँ सवेरा, फूलों की चमक से मांगता हूँ रंग गहरा। मुझे नहीं चाहिए दौलत और शोहरत, हर सुबह बस चाहिए साथ तेरा।

हेलो दोस्तों, आ गया नहीं वही प्रोग्राम गीत बहार लेके हाजिर है दिपी सेरा तो हमारे अपने फेवरेट चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो ते। सारे दोस्त कहंदे ने कि भाई मैडम जल्दी जल्दी आया करो। लो जी फे हाजिर है गए हैं ते प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। प्रोग्राम विच किन्नियां सारियां गल्लां तुहानू पता करनियां हुंदियां और अज तां एक बहुत ही अच्छी गल हुई। पता की गल हुई? ट्रैफिक दे नाल रिलेटेड गल हैगी है। दिल तो बहुत कर रहा हुणी उगल दवां सब कुछ हुरी। नहीं नहीं नहीं नहीं, पर थोड़ा जा समा लेना, थोड़ा जा गाना सुनना, उस तो बाद गल्लां करनियां हैगियां क्योंकि मैनू जिन्ना चाह चढ़दा ना इत्थे आंदा ये मैं ही जानदी हैगी आ। सो टाइम हो रहा 10:05 ते गीत मेरे कोल बिल्कुल तैयार बर तैयार है। प्रोग्राम दी शुरुआत करदे आ इस गीत दे नाल।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: ठंडा ठंडा पानी नींबू पानी पीते रहिए और दूसरे को पिलाते रहिए।
1: वाह जी वाह, बहुत खूब केड़े दोस्त पहुंचे ने साडे को।
0: मड़ी जी प्यार पर
1: सत श्रीकाल जी।
0: शमी बूटाला मुजफ्फरपुर जंदल रामा मंडी जी लागी।
1: बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम च।
0: फरमाइश
1: मिला के पहुंच जाओ प्रोग्राम पंजाबी तड़का।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे एह कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक्सपायरी डेट पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो अगली चीज़ आती है मस्कारा ते लिक्विड आईलाइनर। ये मोस्टली जदों जम जाण या फिर बिल्कुल जिदा लेस जी आनी शुरू हो जाए ये विच ते इहदा मतलब ये है कि ये खराब हो चुका है, 3 to 6 months ही चलता हैगा। उस तो बाद तुहानू जिहड़ा ये मस्कारा लिक्विड आईलाइनर इनू जरूर चेंज कर लेना चाहिए हैगा। ये चो अजीब जी स्मैल आनी शुरू हो जाती है, ईवन जो तुसीं अपनी स्किन ते लगांदे हो ना इरीटेशन होनी भी शुरू हो जाती है या खुजली होनी शुरू हो जाती है या जलन होनी शुरू हो जाती है। कई बार असीं आईलाइनर लगा लैने बाद चो सोचते यार अखां भारियां भारियां क्यों लग रही हैं। सो एक्सपायरी डेट इज़ मस्ट। सो ये मैनू पता है कि कई लोग जड़े है ना वो मेकअप नहीं लगाते, उद्दे ही बड़े सोहने होंगे ने, वो भी सोहने तुसीं बन सकते हो जिन्ना हो सके नैचुरल चीज़ां अपने फेस ते लगाउण दी यूज़ करो। घर दे विच साडी जिहड़ी ये प्यारी जी किचन हैगी है ना उहदे विच हर एक चीज़ अवेलेबल हैगी है, चुकुंदर तो लै के आलू टमाटर एवरीथिंग हर एक चीज़, आटा हो गया मक्की दा आटा हो गया नॉर्मल राइस दा आटा हो गया हल्दी हो गई, ये सारिया चीज़ा वो हैगियां जिहड़ियां कि आप अपने फेस ते अपनी बॉडी ते बेसन दही सब यूज़ कर सकते हैं। नींबू दा रस है तो बहुत सारे नुस्खे है तुहानू भी पता होणगे। सो जदों इन्हां अपनी अपनी डेली रूटीन दे विच असीं यूज़ करना शुरू कर दिंदे हैगे ना तो सानू ज़्यादा मेकअप की लोड़ नहीं पैंदी है। हुण किचन की गल तो हो ही रही हैगी है, उत्तों गर्मी है उत्तों फिर अजीब अजीब जीव जंतु सानू देखण नू मिलदे ने किचन दे विच, तुसी भाव समझ गए हो ना मेरा। हुण कीड़ियाँ भी आंदियां है, ओहो हो कॉकरोच भी हुंदे ने, ओ तो उद्दी नहीं चंगे लगदे, उद्दी घबराहट हो जाती उन्हां नू दूर ही होवे, होर जे तो कॉकरोच उड़दा होवे ना उन्हें उड़ के मेरे कोल पहुँचना, मैं उस तो पहला उड़ के दरवाजा बंद कर लैनी हाँ क्योंकि मैनू भी डर लगता है कॉकरोच तो। डरना नहीं चाहिए वैसे, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨੁਸਖੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਦੱਸਦੀਆਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਕਰੋਚਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, आय हाय क्या बात है दोस्तों। वेल दोस्तों, साढ़े श्रोत्या ने बहुत कुछ भेज दिता है, बहुत सारे मैसेज जा चुके ने। सब तो बोला राम स्वरूप अरोड़ा चौंक चिल्लिया सुल्तानपुर लोधी तो लिखते ने कि हादसों के शहर में फिरता है जो हंसता हुआ, हादसों के शहर में फिरता है जो हंसता हुआ, क्या दबा क्या रहा अंदर है जो किस कदर टूटा हुआ। सूरत बदल गई है तो हैरान ना कीजिए, सूरत बदल गई है तो हैरत ना कीजिए, हम हादसों के शहर में रहते हैं दोस्तों। क्या बात है जी, बहुत सुना लिखे राम स्वरूप जी। राम स्वरूप जी स्वरूप आई थिंक लगता डॉक्टर ने बहुत अच्छी हैंडराइटिंग, समझ गए होंगे दोस्तों कि राम स्वरूप जी जो हैंडराइटिंग है ना

0: डायरी चलती है जी।
1: नहीं सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। एक क्वेश्चन आ रहा था इसी पे ही कि आप हम कहते हैं ना कि हम अपने एक्सपीरियंस से ही एक शायर बनते हैं, कि जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसके ही बारे में लिखते हैं। ऐसा भी होता है कि सर इसके अलावा भी हम दूसरों की कहानी भी समझ कर, उनको ऑब्जर्व करके उसके बारे में भी लिखते हैं?
0: अरे बेशक सर, शायरी उसी विधा का नाम है। देखिए, जब एक शायर लिखता है वो एक अलग अलग बात है, पहले उसके खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, खुद के दर्द होते हैं, खुद की खुशियां होती हैं, लेकिन उससे ऊपर एक शायरी का पीक आता है जब आप एक पेड़ से पत्ता टूटता है, एक फल गिरता है, या किसी परिंदे को पिंजरे में देखता है, तो ये बहुत सारे पेन है एक शायर खुद महसूस करता है, और वो जो करेक्टर है वो खुद में फील करके ही उन चीजों को लिख सकता है।
1: क्या बात है सर, क्या बात। सर बेसिकली सर इसी मूड में, वैसे तो मैं कहूँगा इसी मूड में ना, आपकी कुछ लिखी हुई अगर हमें गज़ल या कोई पोइट्री सुनने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए सर।
0: जी, एक तस्वीर पे मैं आपको एक गजल
1: जी
0: सुनाता हूं कि सुकूने जहां का बाइस है मेरी खातिर तेरी तस्वीर, कभी रोने नहीं देती तेरी हंसती हुई तस्वीर, तुम्हारा
1: आय हाय हाय, क्या बात है सर।
0: बोल ना सुनने से ज्यादा देखता हूं मैं, तुम्हारा बोल ना सुनने से ज्यादा देखता हूं मैं, कि मुझको खींचनी होती है हर एक लफ्ज की तस्वीर।
1: आय हाय हाय, क्या बात है सर, क्या।
0: एक और शेर सुनाऊंगा
1: जी
0: इसमें
1: जी
0: मैं, कि
1: इरशाद
0: हर
1: सर।
0: एक तस्वीर में मैं इसलिए भी मुस्कुराता हूँ, हर एक तस्वीर में मैं इसलिए भी मुस्कुराता हूँ कि वो तस्वीर हो सकती है मेरी आखिरी तस्वीर।
1: अरे बाप रे, क्या कमाल कर दी सर, कमाल। ये तो ना मतलब तीर ही मार दिया आपने सर हमारे
0: बहुत बहुत
1: मतलब
0: शुक्रिया, बहुत
1: जरूरतों
0: बहुत
1: के लिए।
0: शुक्रिया।
1: सर आखिरी क्वेश्चन सर एक पूछना चाहूँगा, जैसे ना हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं ना, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि असल में शायर है कौन? शायर जो लिखते हैं वो है कौन असल में, उनकी डेफिनेशन क्या है आपके आपके लिए?
0: देखिए, शायरी की डेफिनेशन और जब मैंने दी है तो वही एक शायर की डेफिनेशन है कि शायरी कुछ नहीं है, बस जो दिल की बात है उसको लफ्जों में बयां करना होता है ना।
1: जी
0: अगर मैं कुछ लाइनों में बोलूं तो जैसे आप 10 पन्नों की चिट्ठी को समझा नहीं सकते किसी को,
1: जी
0: लेकिन एक शायर जो करता है वो 2 पंक्तियां कह के, 2 लाइन कह के, वो मतलब एक मैक्सिमम इम्पैक्ट डालने की जो एक आर्ट होती है वो एक शायर करता है।
1: शेयर कर।
0: मतलब मैं आसान शब्दों में अगर कहूं तो जो दिल का दर्द है या खुशियां हैं एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में नहीं समा पाती है, लेकिन एक शायर है अपनी कुछ बातों में, कुछ मिसरों में उन चीजों को बयां कर देता है।
1: जी, मैं समझ गया सर। जैसे एक हम कोई गाना सुनते हैं, चाहे वो 3-4 मिनट का हो, वो जो इतनी लाइनों मतलब जो वो इतनी लाइंस बोलते हैं, उसकी बस 2 लाइनों में आप पूरी उसकी पेशकारी कर देते हो, लाइक ऐसे
0: बेशक
1: सर।
0: सर, बेशक।
1: सर बहुत कमाल, अच्छा लगा आपको सुनकर सर। और हम जैसे ना जो ये प्रोग्राम होता है ना, जब जिस मतलब आ जाता है ना सर, एक सुकून आ जाता है कि चलो यार ना सर, आप सुनते हो हमारा दिला शायर प्रोग्राम?
0: अरे बेशक बेशक, ये शायराना के तो शायर नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा इसको।
1: अरे सभी मैंने वैसे गलत सवाल पूछ लिए इस हिसाब से, तो मैंने आपसे क्यों पूछा ये? नहीं आप तो जरूर सुनते होंगे
0: ये
1: सर।
0: सभी शायर दोस्त जब हम बैठते हैं तो कई बार इस प्रोग्राम की चर्चा होती है, बहुत उम्दा प्रोग्राम होता है, और ये
1: जी
0: ऐसे ही बढ़ता रहे, चढ़ता रहे, और हम
1: जी
0: सब इसको सुनते रहे।
1: जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, साहिल सर आपका, आप अपने
0: बहुत
1: एक्सपीरियंस
0: बहुत
1: बताने के
0: शुक्रिया
1: लिए,
0: आपकी,
1: अपना
0: सभी
1: तजुर्बा,
0: ऑडियंस का और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सर।
1: सो दोस्तों, तू ही सुन रहे हो प्रोग्राम दिला शायर है ते हुनी असी, जिन्हें गलबात की है बहुत ही कमाल दे, जिन्हें गजल लिखते ने, पोइट्रीज लिखते ने। आई होप तुझे इन्हों का तजुर्बा भी सुने होना थे। एंड गल की जावे ना एक शायरी दी अंदाज दी, एक शायरी दी डेफिनेशन दी, कि जो उन्होंने कहा ना 10 पन्ने च जो चीज़ लिखी होंगी है, शायर का काम होंगे उसको 3-4 लाइन च उस चीज़ को पूरी तरह समझा देना दोस्तों। वैल आई होप थानू भी पसंद आई होगी चीज़। वैल दोस्तों, अगली पेशकारी करते हैं, उस तो बाद अपने स्रोतिया दे असी मैसेज पढ़ा, तो एंड उन्होंने भी अपना कनैक्ट करेंगे।

आय हाय, क्या जमाना था कि हम, क्या जमाना था कि हम रोज मिला करते थे। क्या बात है यार, मजा आ गया सुन के। वेल, साडे सरोतिया ने सानू भेजा है। सब तो पहला साडे सरोते ने इन्हां ने नाम मैनशन नहीं किया, पर फिर भी सानू इन्हां दा नाम पता है। सुखदेव सिंह लखनपाल जी। सुखदेव सिंह लखनपाल जी की लिख रहे ने, जरा पढ़ के देख रहे हैं जी। कल शीशा था, कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। हाय हाय, क्या बात है जी। ये वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। क्या बात है सर। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। और भी उन्होंने लिखा है, लिख रहे ने कि इस रंग बदलती दुनिया में देखे रंग बधेरे ने। अच्छा जी, बधेरे ने। इस रंग बदलती दुनिया में मैं देखे रंग बधेरे ने, सब तेरे मुंह ते तेरे ने, ते मेरे मुंह ते मेरे ने। क्या बात है सर। ये तो है दोस्तों। हाँ देखो दोस्तों, असी ना हमेशा सोचते होंगे कि पॉजिटिव रहो। वैसे तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि ना सानू ना बहुतियां गल्लां ना दिल नू नहीं लानियां चाहिए दोस्तों। क्योंकि सब तो पहला, अगर जो जेकर तुसी अपने आप नू प्यार करदे हो ना दोस्तों, तो अपने आप नू तकलीफ ना देवो दोस्तों, तो अपने आप नू नाजुक भी ना बनाओ, तो हमेशा एक पॉजिटिव इंसान, एक अच्छे इंसान, तो अपने लिए हमेशा सही बोलने वाले इंसान बनो दोस्तों। तो बाद लिख रहे ने, नमस्कार मेरी शायरी आवारगी। अच्छा, मेरी शायरी, ओके। लिख रहे ने कि आवारगी चाहते हो तो प्यार कीजिए, इश्क को जानना चाहते हो तो महबूब के रुस्वा होने का इंतजार कीजिए। क्या बात है जी। नामगुर की भराड़ीवाल, भराड़ीवाल मेरे गांव का नाम है, जिला अमृतसर पंजाब। बहुत बहुत स्वागत है साडा जी। उस तो बाद साडे होर दोस्त ने बहुत सारे सानू पेश दीनियां चीज़ां, ते असी भी जदों प्रोग्राम पढ़ रहे सी ते बहुत सारियां फोटोज़ सानू, मैं दोबारा रिपीट करदा दोस्तों, हमेशा कोई अच्छे शायर ते तुसी जो लिख रहे हो, तुसी अपनी एक्सपीरियंस, अपनी कविता ज़रूर सांझी करो, असी ज़रूर पढ़ांगे। उस तो बाद सानू एक आई है मोहम्मद मुसफ्फर अरमान पेंट खरूड़ चला मलेर कोटला, तो सानू

जाए कि कहते ना, कभी कभी कोई इंसान हमारी जिंदगी में इतनी खामोशी से आता है कि हमें पता भी नहीं चलता, और फिर वही इंसान हमारी पूरी दुनिया बन जाता है। वो भी मेरी जिंदगी में ऐसी ही आई थी। पहले बस थोड़ी थोड़ी बातें होती थी, फिर उसकी आदत हो गई। सुबह आंख खुलती ही उसका मैसेज देखना और रात को उसकी आवाज सुनकर सोना मेरी रोज की खुशी बन गया था। मुझे लगता था कि चाहे पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, वो कभी नहीं जाएगी, लेकिन शायद मैं गलत था। धीरे धीरे उसकी बातें कम होने लगी। पहले जो हर छोटी छोटी बात मुझसे कहती थी, अब घंटों तक जवाब नहीं देती थी। मैं हर बार खुद को समझाता रहा कि वो व्यस्त होगी, लेकिन दिल जानता था वो दूरी बढ़ रही है। फिर एक दिन उसने सिर्फ इतना कहा, अब पहले जैसा कुछ महसूस नहीं होता, बस वही पल था जब मेरा दिल टूट गया। अजीब बात है ना, इंसान रोता उसके जाने पर नहीं, रोता उन सपनों पर है जो उसने उसके साथ देखे थे। आज भी उसकी याद आती है और आंखें भर आती है, क्योंकि उसने सिर्फ मेरा हाथ नहीं छोड़ा था, उसने वो सारे ख्वाब भी तोड़ दिए थे जिनमें मैंने उसे अपनी पूरी जिंदगी बना लिया था। काश कुछ लोग छोड़कर जाने से पहले एक बार ये भी सोच लेते कि उनके जाने के बाद कोई इंसान जिंदा तो रहेगा, मगर पहले जैसा कभी नहीं रह पाएगा। क्या बात है दोस्तों, उस वक्त साढ़े कोल हो रहा है शायर, मीन बाजार पिंड चौको जला भटंडा, बसंत सिंह टेलर बेटा लवदीप सिंह जस्सल जीवी ने उन्होंने बेटे ओके लिख रहे ने कि कदों पिंड तू आवेगा, आ सीने नाल लावेगा, मुड़के ना जावेगा, सिर ते हाथ रख कसम खावेगा। उस दिती उड़ीक है तेरे हिजर च चढ़दी रूह नू, तेरी मिठी जही एक छू नू आँख घुट के जफ्फी पावांगे। उस दिन दी उड़ीक है तेरे आउण दे दावे नू, मेरे नाल किते वादे नू आके जदों निभावेंगा, उस दिन दी उड़ीक है। अखां चो वगदे नीच नू आके तू अखीर नू अपने हत्था नाल सुकावेंगा, उस दिन दी उड़ीक है। अपने बुझला जसलवे आपे बुझला जसलावे, तेनू बोल के कुछ ना दसनावे, सामने बैठ मेरे चेहरे नू पढ़ पावेंगा, बस उस दिन दी उड़ीक है। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। वेल दोस्तों, आई होप जदों दिला शायर प्रोग्राम चल रहा होंदा दोस्तों, दैन असी की करते हैं, असी ने एक डूंगाई च हमेशा एक चीज़ खो जाते हैं कि हाँ हाँ हाँ कमाल है। इदा लग रहा होंदा जदों तुहाडी शायरीज एंड पोइट्रीज पढ़ रहा होंदा ना दोस्तों, मैं खुद उस चीज़ विच खो जाना होंदा। तो दोस्त मेरे दोस्त जिहड़े इस शो नू खासकर सुनते होगे ना, तो आई होप वह भी इस चीज़ नू हमेशा ध्यान नाल सुनते होंगे, भावें वह चाह की प्याली क्यों ना पीते हुए, चाहे वह कुछ काम भी करते होन, तो जिहड़ा सारा ध्यान है ना उस बंदे दी जिहड़ी ना राइटिंग वल चल जांदा दोस्तों। गल दोस्तों तुसीं सुन रहे हो प्रोग्राम दिला शायर है। लो जी अगली पेशकारी पंकज उदास जी दी आवाज़ विच, दर्द ही खड़।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: अगर बचपन सुरक्षित है तो भविष्य सुरक्षित है, और अगर परिवार मजबूत है तो समाज मजबूत है। एक बच्चे का पहला स्कूल उसका परिवार होता है, जहां वह सिर्फ बोलना नहीं जीना सीखता है। परिवार वह छत है जहाँ बचपन सपने देखते हैं, और वही नींव है जहाँ भविष्य खड़ा होता है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ शिल्पा गुप्ता और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग, यानी परिवारों के भीतर और समाज में मौजूद असमानताओं के बीच बच्चों का शारीरिक और मानसिक कल्याण, बच्चों का विकास अच्छे भोजन और शिक्षा के साथ साथ एक सुरक्षित सहयोगी और भावनात्मक रूप से मजबूत पारिवारिक माहौल से भी जुड़ा होता है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो विशेष विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर MS तोमर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: थैंक यू।
2: और साथ है KR चटर्जी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में।
4: नमस्कार, थैंक यू।
2: आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे परिवारों में मौजूद असमानताएं बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। तो डॉक्टर MS तोमर जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों के विकास के लिए फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है।
3: देखिए, परिवार का बहुत ज़्यादा रोल होता है बच्चे के विकास में। सबसे पहले देखिए, परिवार का जो कंसेप्ट है बहुत पुराना है, बड़ा क्लियर कट डिफाइन किया गया है हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में, कि स्नेह संरक्षण उत्तरदायित्व एवं संस्कार है संयुक्त समूह परिवार है। अर्थात प्रेम सुरक्षा जिम्मेदारी और संस्कार से जुड़े लोगों का समूह ही परिवार है। तो जब भी हम परिवार की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि उस परिवार में ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है। जैसे प्रेम है, सुरक्षा है, एक दूसरे को सिक्योरिटी फील होना चाहिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग सिस्टम वो हमें क्रिएट करना है। जिम्मेदारी, हर किसी की एक जिम्मेदारी तय होना चाहिए, उस जिम्मेदारी का या रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोग कितना निर्वहन कर रहे हैं। और संस्कार, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि बच्चों में जो हम संस्कार देते हैं वही जो हम बिहेव करते हैं वही संस्कार बच्चों में जाते हैं। तो जितना फैमिली का अच्छा ये सारे पॉइंट्स हैं उतना ही बच्चा के विकास पे असर पड़ता है परिवार का।
2: किया जी, आपसे जानेंगे कि बच्चों का मानसिक विकास कैसे करें।
4: जी देखिए, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उनको अपने माँ से एक जुड़ाव होता है और वो अपने माँ के साथ रहता है, तो जब पढ़ता रहता है तो प्यार पनपता है। सो जैसे आज आपका टॉपिक

0: लव. सो उसमें भी बच्चा अच्छी तरह ही पनप जाता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है माँ को या पापा को उनको जादू की झप्पी दे के या उनके साथ बैठ के उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके उनको पास रखना होता है. जितना पास रखेंगे जो फिजिकल टच होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, मानसिक एज वेल एज इमोशनल. अब हम आते हैं डॉक्टर गैरी चैपमैन जो जिन्होंने रिसर्च किया और एक बुक भी पब्लिश किया, 5 Love Languages ऑफ किड्स. उसमें क्या होता है, उन्होंने डिफाइन किया कि 5 Love Languages, जैसे कि ना कुछ बच्चों को गिफ्ट मिलना बहुत पसंद है वो फर्स्ट हो गया उसका लव लैंग्वेज, फिर किसी को तारीफ करना पसंद है तो वो हो गया सेकेंड लव लैंग्वेज, फिर हो गया फिजिकल क्लोजनेस, फिर हो गया है कम्युनिकेशन कैसे हम बातचीत करते हैं बच्चों के साथ, फिर हो गया है ख्याल रखना. तो ये 5 चीज़ें हो गए. तो जिस बच्चे का माँ को पता लग जाता है कि उस बच्चे का कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी है, कौन सा सेकंड, कौन सा फिफ्थ, उस हिसाब से बच्चों को प्यार देना चाहिए. अब वो तो बचपन की बात हो गई, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है स्कूल में जाने लगता है बच्चा, तो उसमें उसके पीयर्स आ जाते हैं, स्कूल फ्रेंड्स आते हैं, तो माँ को पापा को सारा टाइम एक बच्चों को एक माहौल देना है, एक उनको सेफ्टी नेट देना है कि बच्चे तुम्हारे लिए हम सदा पास में रहते हैं, तो बच्चा खुल के बात करेगा. ऐसे करते करते जब बचपन से माँ बाप का सपोर्ट रहता है, बच्चा जब बड़ा होता है तब उनका अलग ही कॉन्फिडेंस आता है. कॉन्फिडेंस के साथ आता है उनका पढ़ाई का उच्च होने का इच्छा, कॉम्पिटिटिवनेस, फिर सब कार्य में उनकी मन की इच्छा भी बड़ी होती है, फिर उनको स्पोर्ट्स में डालते हैं, फिर स्पोर्ट्स से माइंड खेलता है. तो ऐसे करके मेंटल विकास बहुत ही अच्छी तरह से होता है,
1: मतलब मेंटल सिक्योरिटी मेंटली स्ट्रांग करती है.
0: एग्जैक्टली, तो एक बचपन से ही शुरू हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना नींव
1: जी,
0: तो नींव से ही स्टार्ट करना होता है
1: जी. एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर. हेलो
2: हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी, आपका
2: नमस्कार
1: नाम?
2: नमस्कार जी, मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ पंचकुला से.
1: जी बताइए, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में.
2: पहले इस सबसे बेहतरीन परिवार को मैं बधाई देती हूँ.
1: जी धन्यवाद.
0: थैंक यू.
1: रेडियो डॉक्टर आपका परिवार है और आप भी इस रेडियो डॉक्टर का हिस्सा हैं.
2: मैं हिस्सा हूँ पर मेरा सबसे प्यारा परिवार यही है.
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद.
2: एक तो मैं रेडियो फ्रीक हूँ, रेडियो में बहुत पार्टिसिपेट करती हूँ, टीवी मेरे को अच्छा नहीं लगता, पर आपका प्रोग्राम मैं एक महीना कनाडा गई थी बहुत मिस किया. तो इसलिए आप सबको बहुत बधाई.
1: आपने मिस करा, अगर आप लोगों का कॉल नहीं आता तो शायद हम भी आप लोगों को मिस करते हैं. आप हमसे जुड़े रहते हैं, यही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए प्रोग्राम में हर बार एक नया टॉपिक लेकर आए. तो बताइए मिसेस बेदी, क्या प्रश्न है आपका?
2: मेरा प्रश्न सबसे पहले तो ये जो इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया ना 5 प्यार के स्टेप्स बच्चों के लिए, बच्चों की ग्रोथ आजकल इसलिए रुक रही है कि एक तो पेरेंट्स की ही आपस में ज्यादा अच्छे से नहीं रहते, क्योंकि जॉब में काफी डिफिकल्टीज आती हैं. अगर पेरेंट्स ही झगड़ेंगे तो बच्चे की ग्रोथ बहुत खराब हो जाएगी.
1: जी बिल्कुल.
2: दूसरा, फैमिली में अब ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहते, सबसे बड़ी ये कमी आ गई है कि बच्चों की ग्रोथ बढ़िया ही नहीं. मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आपका मैसेज दुनिया जाने
3: जी.
2: और आपका मैसेज दूर दूर तक पहुंचे कि फैमिली बहुत जरूरी है, न्यूक्लियर फैमिली कोई फैमिली नहीं है.
1: जी हाँ, आज इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं कि तो फैमिली लोगों कितनी इम्पोर्टेंट है और फैमिली में रहकर बच्चों का विकास कितना ज्यादा जरूरी है.
2: हाँ जी, तो मैं, मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है पर मैं थैंकफुल हूँ आपकी कि इतना बढ़िया आप लोगों का कॉन्सेप्ट है जो आज का है.
1: जी हम भी आपके लिए बहुत थैंकफुल, आप हमारे साथ, आपने कॉल किया हमारे साथ जुड़े रेडियो डॉक्टर में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर तोमर, जैसे कि अभी केया जी ने कहा कि मानसिक विकास बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, ऐसे में अगर हम बात करें शारीरिक विकास के लिए, तो बच्चों का शारीरिक विकास कैसे करें कि बचपन से ही उनकी ग्रोथ सही हो?
3: देखिए, हमारे एक कहावत है कि बच्चे का जो विकास है, बच्चे की पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, कैसा बनेगा, वो उसके पैदा होने के 100 साल पहले से शुरू हो जाता है. तो पूरी फैमिली को इस पर ध्यान देना है. हम लोग बच्चा पैदा होने के बाद सोचते हैं कि वो हेल्दी है या नहीं. कई बार तो 6 महीने पर बच्चा हो जाता है, उसके बाद आते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए मेरा बच्चा स्वस्थ है या नहीं है. बल्कि जब से बच्चा पेट में आता है, कंसेप्शन से, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन से आपको उसकी हेल्थ के बारे में सोचना है. क्योंकि आपका जो हमारी लैंग्वेज है, मेडिकल लैंग्वेज में, एक गोल्डन 1000 डेज कहते हैं हम इसको, 1000 दिन जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं. राइट फ्रॉम द कंसेप्शन टू टिल 2 ईयर्स ऑफ एज, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि मदर का आपको पूरा ख्याल रखना है, इमोशनल

0: सपोर्ट देना है, उसकी डाइट को अच्छा रखना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा विकास बच्चे का पेट के अंदर ही हो जाता है। जो बच्चे के अंग बनते हैं, बच्चे का मानसिक विकास होता है, उसी को आपको कैरी ऑन करना है।
1: इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे कि आपने बोला ना, तो ये बच्चों का घर में एक माहौल अच्छा सा होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बच्चे ना अपने पेरेंट्स से अब्सॉर्ब कर लेते हैं उनकी परेशानियाँ, जैसे कि आर्थिक परेशानियाँ हुए या नॉर्मल कोई भी ऑफिस रिलेटेड हुआ या मानसिक परेशानी, तो बच्चे वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उनके बिहेवियर में आता है, जैसे वो झल्लाहट करते हैं या टीनेज टैंट्रम्स करते हैं, कुछ
0: बिल्कुल,
1: भी,
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, तो उस वजह से

0: हमेशा याद रखिए, हम जो पेरेंट्स को समझाते हैं कि जैसे ही बच्चा आपके घर में आता है तो मान के चलिए आपके घर में एक बहुत बड़ा कैमरा लगा हुआ है, वो आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, एग्जैक्टली आप कैसे दूसरों के साथ बिहेव कर रहे हैं, आपका इमोशनल एक्सप्रेशन कैसा है, आपका बाकी फिजिकल एक्टिविटी आप कितनी कर रहे हैं, वो सारा आपका बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। और जाने अनजाने में है, जो ऑब्जर्वेशन से बच्चा सीखता है उसी को हम संस्कार कहते हैं। तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत केयरफुल रखना पड़ेगा। आपको झगड़ना है वो नेचुरल, आप अकेले में भी झगड़ सकते हैं, आपको एंगर को मैनेजमेंट करना है, और जैसा आप बिहेव करेंगे वैसे ही आपका बच्चा वो करेगा। बाकी मैडम आप बताइए, कुछ ऐड कॉन करना चाहें इसमें?
1: हाँ किया जी, आप बताइए कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए परिवार का क्या रोल रहना चाहिए, कितना अपनापन उनको देना चाहिए?
2: जी देखिए, बचपन से ही बच्चों के साथ रहना चाहिए, ये मैंने पहले भी बोला है, उनके साथ खेले, माँ बाप खेले, उनके साथ हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, उनको फील करवाएं कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनको बचपन से ही के ग्रैटिट्यूड का फीलिंग दिलवाना चाहिए कि जी थैंकफुल रहे बड़ों से, या जिनसे भी तुम मिल रहा है तुम्हें थैंकफुल रहे। फिर हम आते हैं कि थोड़े जब बच्चे बड़े हो गए हैं, तब जब वो स्कूल जाते हैं, तब उनमें एक पीयर्स प्रेशर के बोल सकते हैं या अदरवाइज ऑल्सो उनमें एक एग्रेशन आता है, एंगर बिहेवियर आता है। उस टाइम पेरेंट्स को चाहिए कि शांति से चीज़ों को सुलझाएं। वो कैसे कराएंगे? वो पहले तो जब देखेंगे कि एटमॉस्फेयर अगर बिगड़ रहा है तो वो बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे कि वो अपने से ही संभल जाए। उसके बाद उनको समझाएंगे, कहानियों के माध्यम से समझाएंगे कि ये उचित है ये नहीं उचित है, ऐसे करके। उसके बाद एक दैनिक दिनचर्या पर टिके रहे ताकि एक डिसिप्लिन लाए बच्चों में, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होएगा, माइंड में एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, उससे बच्चों का विकास में भी परिवर्तन आएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ठीक है ना। उसके बाद जो परिस्थितियों से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वो परिस्थितियाँ फिर से ना आए, ये माँ बाप को ध्यान में रखना पड़ेगा। बच्चों को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो बच्चे कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें, ये नहीं कि उनको धुतकारे। क्योंकि जैसे माँ बाप, जैसे आज डॉक्टर साहब ने बोला कि माँ बाप जैसे करते हैं वो बच्चे इम्बाइब कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि नॉर्मल है कि माँ बाप झगड़ रहे हैं, इस पे चर्चा विचार करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको ठीक पथ पे जाना है। इसीलिए उन बच्चों के साथ समय बिताएं, फिर उनको जब बाहर ले जाए फिर प्रोत्साहित कीजिए कोई भी एक्टिविटीज़ में, जैसे गाना हुआ, उसमें माइंड का बहुत ही असर होता है, फिर योगा हुआ, फिर मेडिटेशन हुआ, इन सब चीज़ों में जो नर्व्स होते हैं उनको सूदिंग मिलता है। फिर प्रैक्टिस करना चाहिए कि एकांत कैसे रहा जा सकता है, उसमें बहुत ही अच्छा होता है। फिर एग्ज़ाम्स में परिवर्तन आता है, ऐसे करके शुरू से ही बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट में ध्यान रखे पेरेंट्स।
1: लेकिन आजकल जहाँ सोशल मीडिया के टाइम पे बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, तो बच्चे बाहर नहीं जाना चाहते खेलने के लिए,
2: क्योंकि उनके होमवर्क भी तो बहुत आते हैं और सारा इंटरनेट से ही आता है।
1: जी तो बच्चे बोलना नहीं चाहते, तो ऐसे में उनका शारीरिक विकास कैसे करें? डॉक्टर तोमर आप बताइए।
0: देखिए आजकल के खास करके न्यूक्लियर फैमिलीज में जहाँ दोनों ही माँ बाप वर्किंग है, बहुत मुश्किल हो गया है टाइम को मैनेज करना, खास करके बच्चों को गुड क्वालिटी टाइम है वो नहीं मिल पा रहा है, और टाइम पेरेंट्स दे भी रहे हैं तो उसमें क्वालिटी टाइम नहीं, एंगेजमेंट बच्चे के साथ बहुत कम हो रहा है। स्क्रीन बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन है। इधर एक क्लियर कट गाइडलाइंस कि 2 साल से पहले, 18 महीने से पहले बच्चे को स्क्रीन दिखाना ही नहीं है, लेकिन जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है वो खाना नहीं खाता,
1: हम
0: मम्मी को लगता है यस, तो उसको खाना खिलाने के लिए अक्सर मना करते हैं कि आपको बच्चे को स्क्रीन नहीं दिखाना, लेकिन मम्मी कहती है सर मैं सिर्फ खाना खाते समय दिखाती
2: हूँ। एग्जैक्टली,
0: आपका बच्चा कोई डस्टबिन नहीं है कि आपने मोबाइल के थ्रू उसका मुंह खोला और अंदर खाना डाल दिया, वो खाना उसको हजम भी नहीं होगा, उसको कोई फायदा भी नहीं होना, वो कुछ सीख ही नहीं रहा उस खाने से, उसको टेस्ट को नहीं ले रहा बच्चा, सिर्फ मुंह में अंदर जा रहा है। तो कभी भी बच्चे को शुरुआत वहीं से होती है 5-6 महीने से कि बच्चा जब खाना नहीं खाता है, तो स्क्रीन टाइम के लिए गाइडलाइंस बड़ी फिक्स हैं। आपको 2 से 5 साल का बच्चा है मैक्सिमम आपको 1 आवर तक आपको देना है, 5 साल से ऊपर बच्चे को 1 to 2 आवर्स आप दे सकते हैं, बट उसमें भी आपको कंट्रोल रखना है, स्क्रीन और डिजिटल कंट्रोल जो पेरेंटिंग कंट्रोल है वो आपको रखना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है। सो ये बहुत ज़रूरी है। इतना सारी समस्याएं आज के टाइम में हम लोग देखते हैं, खास करके हमारे क्लिनिक्स में बच्चे बहुत टेंट्रम शो करते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो गई है, ऑटिज्म है, हाइपर एक्टिव बच्चे हो रहे हैं, जिनका न केवल स्क्रीन की वजह से बल्कि जंक फूड को भी आपको डिस्कस करेंगे बाद में, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं और पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। तो एग्जैक्टली टाइम

0: खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा। घर घर तभी लगता है जब परिवार में सभी सदस्य हों, सभी आपस में मिलजुल कर रहे। जैसे कि कॉलर ने पहले हमसे लाइन पे कहा था कि आजकल माता पिता वर्किंग है, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते।
1: जी, जी।
0: तो ऐसे में बच्चों के वेलबींग के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, तो माता पिता को क्या करना चाहिए जिससे उनकी शारीरिक ग्रोथ सही हो, वो हेल्दी हो? क्योंकि अक्सर हम कह देते हैं हेल्दी है, लेकिन बच्चे इतने हेल्दी नहीं होते, तो क्या किया जाए?
1: देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा हेल्दी की डेफिनेशन क्या होती है, हेल्दी होता क्या है बेसिकली। तो अगर आप WHO की डेफिनेशन को देखें तो इसका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज हेल्थ। तो कोई बच्चे का वेट अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी हो गया। उसको इमोशनली कितना स्ट्रांग है बच्चा, सोशली वेलबींग है कि नहीं उसकी, तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। दूसरा, अभी जो हमारे कॉलर ने एक क्वेश्चन उठाया था कि पेरेंट्स घर में झगड़ते हैं या कुछ करते हैं, तो

0: से आप सलाह लें कि कैसे आपको आगे
1: लेकिन
0: बढ़ना
1: देखा
0: है।
1: जाए तो बचपन से हमने ही उनको आदत, फोन देकर एक
0: बिल्कुल
1: आदत डाल
0: बिल्कुल
1: दी,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: लगता है कि बाहर जाएंगे इस अच्छे एक जगह बैठे हैं फोन देख लें तो। लेकिन इसके लिए पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है कि बच्चों
0: बिल्कुल
1: को फोन
0: फिक्स
1: ना
0: होना
1: दें?
0: चाहिए, बिल्कुल डिजिटल फ्री जोन आपको डिक्लेयर करना है घर में, कि जैसे आप जहाँ खाना खा रहे हैं वहाँ डिजिटल बिल्कुल अलाउड ही नहीं होना चाहिए, वो एरिया बिल्कुल डिजिटल फ्री होना चाहिए। आपका बच्चों का बेड है जहाँ पर आप सो रहे हैं वो बिल्कुल डिजिटल फ्री होना चाहिए, वहाँ अलाउड ही नहीं होना चाहिए। 1 घंटे पहले बिल्कुल आपको मोबाइल और टीवी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो रूल्स हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे, अच्छा लगता है बच्चे फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं नहीं करते
1: और
0: हैं।
1: बच्चों का जो खाली टाइम है उस पे फोन देने की बजाय बच्चों को बाहर वर्कआउट के लिए ले
0: दिस
1: जाएं,
0: इज द
1: स्पोर्ट्स
0: ओनली
1: के
0: वे।
1: लिए।
0: बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करें, ये तो मानता ही नहीं है, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होता, जितने बच्चों को आप बाहर स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट करेंगे बच्चे आपका मोबाइल छुएगा तक नहीं, प्रॉपर टाइम दीजिए स्पोर्ट्स के लिए
2: लेकिन
0: उसको।
2: आजकल माँ बाप ही इतना फोन पे रहते हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं
1: हाँ
2: माँ बाप जो गेमिंग में आते हैं,
0: बिल्कुल
2: और फिर बच्चे इतने छोटे होते हैं 2-3 साल से वो मोबाइल छोड़ना नहीं चाहते हैं, तब एज अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर हम थेरेपी देते हैं बच्चों को, प्रॉपर थेरेपी।
1: उसमें क्या होता है थेरेपी में?
2: देखिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज, न्यूरो इज माइंड रिलेटेड, लिंग्विस्टिक हम जो बात करते हैं अपने माइंड के साथ, और प्रोग्रामिंग हम जैसे प्रोग्राम्ड हुए हैं इतने सालों से, ठीक है। नाउ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होता है कुछ, ये टूल्स है, मतलब कुछ एक्सरसाइजेस है जिसके माध्यम से हम एक पेशेंट्स को थेरेपी से ठीक करते हैं। इसमें हम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उससे हम रिलैक्स करवाते हैं पेशेंट को। उसके बाद एक्सरसाइजेस हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद वो बच्चा एक्सरसाइजेस थ्रू माइंड रिलेटेड एक्सरसाइजेस जो कि नथीटा टाइम में होते हैं, जो सुबह का टाइम होता है, उस टाइम में प्रैक्टिस कर करके वो ठीक होते हैं। बट ये भी पेरेंट्स का ही हाथ होना चाहिए, उनका सपोर्ट, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला ना कि एक रूल बनाना चाहिए, लेकिन जनरली पेरेंट्स बनाते नहीं है क्योंकि उनके कन्वीनियंस पे चलता है सब कुछ।
1: जी
2: तो अगर वो पेरेंट्स रूल बना दे जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, तो वो एकदम बच्चा ठीक हो जाता है। तो जैसे
0: मैं
2: फ्लू,
0: थोड़ा सा ऐड करना
2: हाँ
0: चाहूँगा इसमें,
2: जरूर
0: हर पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि उनका रोल क्या है, उन्हें क्या करना है एग्जैक्टली। उन्हें क्या लगता है कि अच्छी बुक्स दे देना, अच्छे उनके लिए मोबाइल या कुछ गेमिंग जो आजकल आते हैं वो दे देना, वो पेरेंटिंग नहीं है
2: ना, वो एडिक्शन हो
0: एग्जैक्टली।
2: जाता है।
0: आपको ये सीखना है कि आपका रोल एज ए पेरेंट्स, माँ बाप का रोल इतना होता है कि बच्ची को अच्छी लाइफ जीना कैसे सिखाना है वो आपको आना चाहिए,
2: ठीक,
0: ये
1: देखा
0: बहुत
1: जाए
0: जरूरी
1: तो
0: है।
1: अगर स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों के बिहेवियर में भी काफी चेंजेस आते हैं,
2: बहुत
0: एग्जैक्टली
1: तो
0: बहुत सारा फर्क पड़ रहा है इसका।
2: आप
1: जीके
2: मानेंगे
1: जी,
2: नहीं,
1: हाँ
2: बच्चे बच मतलब बहुत ही
0: 90%, यस यस 90% प्रॉब्लम्स बच्चों की हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रीन है, जो कि मैं हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। मैडम आपने भी देखा होगा
2: हाँ, बिल्कुल
1: जी,
2: वेपिंग में आ जाते हैं बचपन से, ये ड्रग एडिक्शन में आ जाते हैं, बट एक बार अगर आ गए तो बस लाइफ तो गई।
1: तो बच्चों में एंजाइटी हो गई, वो शायद लोनलीनेस में चले जाते हैं, मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं, लोगों के साथ सोशल होना पसंद नहीं करते,
0: यस
1: तो
2: उसके
1: उसके
2: लिए
1: लिए
2: भी, उसके
1: हाँ
2: लिए भी हम NLP के थ्रू उनको थेरेपी देते हैं, तब वो सुधरते हैं, अदरवाइज। और देखा गया है कि ये जो इंडिया में मानसिक अवस्था है वो कुछ अच्छी नहीं है, वो 5 करोड़ किड्स दे आर अफेक्टेड, पीड़ित है, और
0: यस
2: 80-90% जो पेशेंट्स हैं, मतलब प्रॉब्लम है जिनमें, वो चिकित्सा ही नहीं करवाते कुछ सोशल स्टिग्मा के वजह से, और कुछ जानने ही नहीं खुद पाते हैं कि,
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: और ये सारा स्टार्ट होता है यही एग्रेशन से, फिर एंगर से, डिप्रेशन, बिहेवियर डिसऑर्डर, और घर से ही तो शुरू होता है ये
1: जी।
2: पहले।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये
2: हाँ
1: लिखते
2: जी
1: हैं राजेश कुमार चौहान जालंधर से, ये लिखते हैं, नमस्कार, बच्चों को प्रेरक कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करने से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास हो सकता है, लेकिन ऐसा ना स्कूलों में हो रहा है ना घरों में, तो क्या इसके लिए कुछ काम नहीं किया जा सकता? डॉक्टर तोमर, पहले आप बताएं इस पे,
0: देखिए,
1: शारीरिक पूछ रहे हैं कि शारीरिक
0: हाँ
1: विकास
0: जी
1: कैसे
0: हाँ जी हाँ
1: करें।
0: जी ये कहानी पढ़ने से शारीरिक विकास होगा ये थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आया, बट डेफिनेटली बच्चे की मेमोरी अच्छी बनती है जब कहानी सुनते हैं, एक बॉन्डिंग बढ़ती है। अक्सर जो दादी माँ की कहानियाँ हुआ करती थी वो एक मैसेज भी देती थी कहीं ना कहीं, तो वो जो हम एक हम वैल्यू सीखते हैं परिवार से, तो वो कहानी के थ्रू ही हमें सिखाया जाता था। शारीरिक विकास के लिए तो आपको बच्चे को अच्छा खाना देना है, हेल्दी डाइट देनी है, बच्चे का जो खेलने कूदने का समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, बच्चे को सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना है, और स्क्रीन से आपको दूर रखना है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो स्क्रीन से हो रहा है
1: वो
0: बच्चों में।
1: स्क्रीन टाइम से बचने के लिए ही बच्चों को शायद कहानी पढ़ने

0: के लिए कह रहे हैं कि प्रेरित कैसे करें, तो इस पे
1: हाँ
0: केयर जी आप क्या कहेंगे?
1: जरूर, इससे जब जब बच्चे कहानी पढ़ेंगे या सुनेंगे भी, माइंड को जाएगा वो आवाज़, तो सूदिंग इफेक्ट होगा नर्व्स में, ब्रेन के नर्व्स में होगा, और फिर वो बातों में फिर वो सब आता जाएगा, और फिर जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, हेडेक होता है बच्चों को, स्टमक एक होता है, वो पता लगता रहता है कि बच्चा ठीक से जैसे कि ना चल, मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है उनको, ये सब मेंटल इश्यूज स्टार्ट हो रहे हैं, उससे पता लगता है। तो ये ज़रूरी है कि कहानियों के माध्यम से ही बच्चों को बहुत आराम मिलता है।
0: एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं, सभी स्टूडियो में आए एक्सपर्ट और एंकर मैम को गुड आफ्टरनून।
1: थैंक यू।
0: वो लिखते हैं, स्कूल में इस विषय में क्या कोई कार्य हो रहा है, इनका कोई काउंसलिंग होता है क्या, कृपया बताएं। थैंक्स नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार उत्तराखंड। तो क्या जी आप क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि काउंसलिंग की
1: है, ये तो होता है, हैप्पीनेस करिकुलम तो खूब ही चल रहा है आजकल, प्रधानमंत्री का जो भी है, कुछ करिकुलम्स है हर स्कूल में चल रहा है, तो स्कूल्स में करते हैं काफी लोग,
0: बच्चों की भी काउंसलिंग होती है और शायद पेरेंट्स की भी होती है कि वो बच्चों के
1: साथ का तो होता है, पीटीएम मीटिंग्स हम हर समय पहुंच जाते हैं सैटरडेज को।
0: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं देवदत्त परसोलिया, असिस्टेंट वायरलेस ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विस। नाइस टॉपिक, सुपर प्रोग्राम, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू देवदत्त जी,
2: थैंक यू सो मच।
0: इस पर बातें हम और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: मेरी दुनिया तू ही रे, हर माँ बाप को बच्चे को ये फील कराना ज़रूरी है कि मेरी दुनिया तू ही रे, जिससे एक परिवार में एक बॉन्डिंग दिखे। डॉक्टर तोमर, आप हमें बताइए कि बच्चे की बचपन से हर एज ग्रुप में ग्रोथ प्रॉपर हो, उसके लिए हम क्या करें, क्या क्या हमें देखना चाहिए कि बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है या कहाँ लैग कर रहे, कैसे पहचाने?
2: देखिए, जब से बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से उसकी वेलबींग के बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे कि हमने बताया था, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज गोल्डन 1000 डेज, जो हम पहले भी आप डिस्कस किए थे। शुरू के 9 महीने का जो गर्भावस्था का समय होता है और उसके अलावा जो 2 साल हैं, बच्चे का मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट 90% उसी एज में हो जाता है। अक्सर हमें लगता है कि 2 साल के बाद बच्चा इंटेलिजेंट बन जाएगा, उसका बुद्धिमान बन जाएगा, वो कभी नहीं हो सकता। IQ लेवल जो होता है बच्चे का, वो 2 साल तक ही डेवलपमेंट होता है, 90% हो जाता है या मैक्सिमम 3 ईयर्स तक हो जाता है। तो जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, उस समय उसके मेंटल डेवलपमेंट पे और उसके फिजिकल डेवलपमेंट पर, दोनों पे ही, शारीरिक और मानसिक विकास पे हमें काम करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ बहुत पहले से, हजारों सालों पहले से गर्भ संस्कार जैसे एक कंसेप्ट आया था। जैसे आपने अगर सुना होगा तो, जैसे अभिमन्यु था, पेट में से सीख के आया था, ऐसा नहीं था कि कोई मैजिक हुआ होगा या कुछ सीख के आया होगा। दैट वॉज ए टोटली एपिजेनेटिस, मीन्स वो कंडीशनिंग इस तरीके से किया गया कि बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ, उसका शारीरिक विकास बहुत अच्छा हुआ। तो वो आपको 9 मंथ का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो 9 महीने आपको मदर पे फोकस करना है, मदर को खुद अपने आप पे फोकस करना है, ताकि उसका बच्चा है अच्छे से ग्रो करे अंदर। आपको बहुत छोटी सी बात नहीं पता होगी, जो कि प्रूवन है बहुत सारी स्टडीज में, कि जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं, वो एक सीजरियन बॉर्न बेबी होते हैं, तो जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है उसका इम्यून सिस्टम, उसका इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा होता है। दैट्स इन प्रूवन थिंग। हमें इस एंगल पर भी काम करना चाहिए कि आजकल पेरेंट्स अक्सर फैमिली प्लानिंग करती नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी कोई प्लानिंग होती ही नहीं है, उसको कई सालों पहले से आपको अपने आप को तैयार करना है ताकि आप एक हेल्दी बच्चा समाज को दे सकें। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद देखते हैं कि शुरू का जो 6 महीने का टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस पीरियड में बच्चे का सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नींव भरती है वो भरती है, चाहे इम्यूनिटी का हो, चाहे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हो, चाहे उसका शारीरिक विकास हो। उस समय 2 चीज़ें होती है बच्चे का, एक तो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, तो बच्चे को बाहर की बीमारियों से बचाना भी है हमको, और बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा करना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिसको पहली वैक्सीन्स कहते हैं, वो है माँ का दूध। माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप देखेंगे, बहुत सारे स्टडीज में ये प्रूवन हुआ है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो अक्सर बीमार नहीं पड़ते हैं। माँ का दूध केवल उसी समय पेट भरने के लिए नहीं होता है, बल्कि 100 साल तक के लिए, लाइफ लॉन्ग बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीज हैं आज के टाइम में, जैसे कि एलर्जी है, अस्थमा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, बहुत सारी कैंसर

0: सर से, इन सब से आपको बचाना है बच्चे को। तो सिंपल है कि बच्चे को 6 महीने माँ का दूध पिलाया जाए, तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव मदर फीड। मींस माँ के दूध के अलावा आपको सपने में सोचना भी नहीं है कि कोई एक बूंद भी ऊपर से कुछ देना है। तो ये हमारा 6 महीने तक का टाइम हो। जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फिर से स्क्रीन अंदर आ जाती है, तो उससे वहाँ आपको बचाना है। 6 महीने के बाद माँ का दूध आपको देना है, किसी और की माँ का दूध आपको देने की जरूरत नहीं है। अब जैसे बच्चा 6 महीने का होता है, अक्सर माँ क्या करती है कि उसको गाय भैंस का या डब्बे का दूध पिलाना शुरू कर देती है, तो उससे आपको बचना है। आप उसको खाना देना स्टार्ट करिएगा, माँ का दूध चलने दीजिए 2 साल तक के लिए, साथ साथ में उसको खाना देना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से हम बच्चे को 2 साल तक डेवलप कराते हैं। उसके बाद फिर आपको हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, हम सब जानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, मम्मी को बिजी लाइफस्टाइल हो गया है, सबको शॉर्टकट चाहिए, इतने सारे बेबी फूड आ गए, इसकी इंडस्ट्री देख कितनी बड़ी हो गई बेबी फूड की, एंड देर ऑल प्रोसेस फूड, दे आर ऑल जंक फूड एंड दे आर वेरी वेरी डेंजरस, दे प्रमोट ओबेसिटीज। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, एडिक्शन होता है। अगर आपने कभी एक बार कुछ जंक फूड ले लिया, आपको घर का खाना बच्चों को अच्छा लगेगा ही नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को वो जंक फूड कभी भी, क्योंकि बहुत हाई शुगर होता है उनके अंदर, बहुत हाई सॉल्ट होता है, और जैसे ही बच्चा वो खाना खाने के बाद फिर घर का खाना खाता है तो उसको वो किक नहीं मिलती है, उसके ब्रेन में वो जो अच्छा एक्सपीरियंस है वो नहीं होता है, तो बच्चा फिर घर में खाना खाता ही नहीं है। तो इस तरीके से जैसे बच्चा और बड़ा होता है उसके बाद आपको बच्चे को जितना हो सकता है उतना प्ले टाइम देना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ जब स्कूल जाने लगे तो आपको बच्चे को अच्छा प्ले टाइम देना चाहिए, इससे बच्चा स्क्रीन से ही बचेगा, उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। बाकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए मैडम कुछ आप एड ऑन करना चाहें इसमें?
1: जी ज़रूर जी, बताइए कि जी कि कैसे बच्चों के, ये तो उन्होंने बताया डॉक्टर तोमर ने, शारीरिक विकास कैसे करें, आप हमें बताएं कि मानसिक विकास बचपन से बच्चे का कैसे करें कि जिससे वो बड़ा होते होते प्रॉपर उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो जाए।
2: हाँ जी, देखिए जैसे ही बच्चा आ गया, बाहर आ गया जैसे बच्चा, तो उनके पेरेंट्स को उनको पार्क में ले जाए, फिर पार्क में जैसे जाएंगे तो पेड़ पौधों के साथ जब रहेंगे बच्चों, वो अलग ही एक नेचर से इंट्रोडक्शन होएगा बच्चों का। सो ऐसे करते करते थ्रू आउट एवरी डे एक पार्क का हैबिट बनाइए, तो बच्चा थोड़ा बड़ा होएगा, खेलेगा, नंगे पैर पार्क में चलेगा, ग्रास के साथ उसका ग्राउंडिंग होएगा, तो जो ग्रास के साथ उसका पैर में चलने से वो जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट लेवल का होता है। फिर बचपन से ही ट्राई करने के लिए कि योगा करें बच्चे, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, मेडिटेशन के रूप में नहीं, साइलेंस प्रैक्टिस करें, बोले कि थोड़ा थोड़ी देर शांत रहो। तो ये शुरुआत कैसे करेंगे, पहले 5 मिनट से करेंगे, 1 हफ्ता 5 मिनट किया, 2 हफ्ता 10 मिनट किया, तो जब बचपन से ही करेंगे बच्चे तो उनका आदत लग जाएगी। फिर घर में देखेंगे कि प्रेयर्स हो रहे हैं, पूजा पाठ होता है, तो पूजा पाठ से भी शांति मिलती है, जो इसेंस का जो खुशबू आता है उसमें भी एक आराम मिलता है नसों को, नर्वस सिस्टम को। फिर हम आते हैं, जैसे मैं साइको न्यूरोबिक्स प्रैक्टिशनर भी हूँ, वो है हाई लेवल ऑफ मेडिटेशन। तो जैसे मैंने बोला, बचपन से ही थोड़ा थोड़ा करके साइलेंस प्रैक्टिस किया, फिर मेडिटेशन किया, फिर हाई लेवल पे गए, तो जब जब जितना आप मेडिटेशन करोगे, साइलेंस प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका नर्वस सिस्टम कूल होएगा और आप झगड़ा नहीं करोगे बड़े होके। आजकल क्या होता है, रोड रेजेस होते हैं, रोड रेजेस में क्या होते हैं, झगड़ा अशांति शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि दिस इज नॉर्मल, बट ये नॉर्मल नहीं है। तो इसीलिए घर का माहौल एक उचित देने के लिए माँ बाप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है।
1: जैसे अभी आपने कहा कि कोई इंसिडेंट हो गया, झगड़ना शुरू करते हैं, इसी से रिलेटेड एक मैसेज हमारे पास आया है, ये लिखते हैं, नमस्ते मैडम, आई एम फ्रॉम गैंगटॉक, हाउ टू कॉम्बैट द टेम्पर टेंट्रम एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट।
2: हाँ, इसमें मैं अच्छी तरह बताऊंगी, क्योंकि ये मैंने अच्छी तरह थेरेपी में मतलब ठीक किया है कुछ बच्चों का। देखिए, जैसे ही बच्चा बहुत हाइपर हो जाता है, छोटा बच्चा भी बहुत हाइपर होता है, ऐसा नहीं कि सर बड़ा बच्चे होते हैं, तो जैसे ही हाइपर हो जाते हैं तो एकदम पूरा माहौल शांत करते, ये नहीं कि पेरेंट्स उसी टाइम ही बच्चों को सब कुछ सीखते, नहीं, वो वेट करें जब बच्चों का क्रोध शांत होएगा। देखिए, एक थॉट जब आती है वो थॉट शरीर में 3 घंटे से पहले नहीं जाती है, और वो थॉट शरीर में 60,000 से लेके 2 लाख तक थॉट्स पर डे एक इंसान को आता है। तो जब सोचिए, जब क्रोधित बच्चा या कोई भी क्रोधित जब होता है तो वो कितना ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है वो थॉट प्रोसेस। तो इसीलिए माँ बाप को चाहिए कि शांति से सुलझाएं। पहले भी मैंने बोला कि कहानियों के माध्यम

0: से उनको समझाए, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर उनको एक्टिविटीज के थ्रू समझाए, लेकिन समझाना जरूरी है, लेकिन उस समय नहीं, थोड़ी देर बाद।
1: लेकिन उसके लिए माँ बाप को भी शांत रहना जरूरी है। कई बार होता है पेरेंट्स भी रिएक्शन कर जाते हैं, वो भी उनको डांटने लगते हैं। इस पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: हाँ जी, पहले तो आप तीनों साहिबान को नमस्कार और आभार।
1: नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
2: जी, मेरे चार सीधे साधे भोले भाले सवाल हैं और एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश।
1: हाँ जी बताइए।
2: तो पहला सवाल मेरा ये है, आप एक मुकम्मल परिवार किसे कहेंगे? क्योंकि कई फैमिली में दो ही लोग रहते हैं, कई में चार रहते हैं, कई में आठ रहते हैं, कई 15-20 भी रहते हैं, कुटुम्बदर भी अच्छी खासी रहती है। तो आप एक कंप्लीट परिवार की परिभाषा मतलब किसे कहेंगे, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल होता यह कि बच्चे माँ बाप तो बिल्कुल बिंदास बेखौफ होके बात करते हैं, कोई भी उन्हें रिक्वेस्ट करनी है, कोई डिमांड करनी है, और जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ उनको उनके सीनियर से कुलीग्स मिलते हैं, तो वहाँ वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो उन्हें मानसिक रूप से कैसे स्ट्रांग किया जाए? तीसरा सवाल मेरा ये है कि बच्चे माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं बच्चों बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हाथ पैर छूने चाहिए, उन्हें ब्लाइंड फेक ब्लाइंड फॉलो करना चाहिए, उनके सामने जुबान नहीं खोलनी चाहिए। अब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ सीनियर्स मिलते हैं, उनकी मजबूती का शराब का फायदा उठाते हैं, इस पे हमें क्या करना चाहिए? चौथा सवाल मेरा ये है कि इन दिनों देखा जा रहा है हिंदुस्तान में कि संयुक्त परिवार जो है वो एकांकी परिवार में कन्वर्ट हो रहे हैं, तब्दील परिवर्तित, तो इसकी वजह क्या है? और पांच मेरा आखिरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश आप सबों से कि जैसे बड़े बुजुर्ग प्यार के भूखे हैं ना मान सम्मान के, ऐसे बच्चे भी हैं प्यार के भूखे मान सम्मान के, तो उन्हें मान सम्मान देना और उन्हें प्यार करना सीखे, क्या कहेंगे आप, प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: तो डॉक्टर तोमर, जैसे कि इन्होंने सबसे पहले पूछा था कि अच्छे परिवार की डेफिनेशन क्या है, किसे कहेंगे?
3: जहाँ स्नेह संरक्षण उत्तरदायित्व और संस्कार होते हैं, संस्कार में जैसे आपने बोला वो सब कुछ आ जाता है। जब संस्कार की बात करते हैं तो जैसे बाहर बच्चे जाते हैं तो वो बिगी बिल बन जाते हैं, या वो कैसे बिहेव करेंगे या कैसे रिएक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमारे एक उसमें भावनात्मक उसमें आती हैं, ये हम यही वैल्यू हमें सीखनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें सिखाना ये परिवार की जिम्मेदारी होती है। दूसरा आपने बोला कि रिस्पेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, छोटों की भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, डेफिनेटली बच्चे को भी उतना ही रिस्पेक्ट चाहिए होता है जितना बड़ों को चाहिए होता है। तो वो बच्चों को हमें सिखाना है कि उन्हें कैसे करना है, और बच्चे को बहुत ज़्यादा हम करेक्ट नहीं करें, दिन भर हम बच्चे को करेक्ट करते रहते हैं ऐसा मत करो वैसा मत करो, बल्कि उसको जब भी बच्चा कोई गलती करता है तो उससे आप सवाल करिएगा, ताकि उसका अपर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, जो ब्रेन में जो कॉर्टेक्स होता है उसका एक इन्वॉल्वमेंट होता है। अदरवाइज क्या है कि दिन भर बच्चा वही सुनता है आप ये मत करो आप वो मत करो, तो उसका भी स्पाइन लेवल पर रिप्लाई आने लगता है फिर वो। तो उस तरीके से करना है, संयुक्त परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, इंसान आजकल जो है वर्टिकल ग्रोथ कर रहा है, वर्टिकल ग्रोथ मतलब ऊंचाइयों पर जा रहा है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वो आसपास की चीज़ें फिर दिखाई नहीं देती हैं, तो वही हो रहा है। ये सही समय कि हमको हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करना चाहिए, हमको अपने आसपास देखना चाहिए, अड़ोस पड़ोस में देखना चाहिए, इससे हमारी सोशल हेल्थ अच्छी होती है, लोगों से मिलना चाहिए। बल्कि दिल्ली जैसे शहरों में मेट्रोज में तो हालत ये है कि ऊपर वाला नीचे वाले को जानता ही नहीं है कि वो कौन रहता है, इससे डेफिनेटली हमारी हेल्थ अच्छी होती है। ये सोशल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ।
1: किया जी, जैसे इन्होंने एक ये भी पूछा था कि बच्चे घर में तो बिंदास डिमांड करते हैं लेकिन बाहर जाकर बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, तो ऐसे में उनका मानसिक विकास कैसे किया जाए?
0: देखिए, ये ह्यूमन नेचर है कि बाहर दिखाना है कि हम बहुत ही सही है, और घर के अंदर वो अपने आप को नॉर्मली बिहेव करते हैं, और उनका नॉर्मल है कि वो जिद करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज़ द नॉर्मल थिंग, बट बाहर तो दिखाना ही है कि हम इतने अच्छे हैं। तो ये सब कुछ शुरुआत होती है वो घर से ही, जैसे आपका घर का फैमिली का प्रोग्राम।
1: नहीं, वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो बाहर नहीं बोलते।
0: हाँ,
1: घर में तो बोलते रहते लेकिन बाहर बिल्कुल चुपचाप रहते, तो वो बाहर भी जैसे आजकल होते छोटी फैमिलीज है, ठीक है, बच्चे पोजेसिव हो गए, रिजर्व हो गए, बाहर उतने सोशल नहीं है, तो उनको सोशल कैसे बनाया जाए वो ये पूछना चाह रहे हैं।
0: हाँ, तो उनकी पर्सनैलिटी क्लासेस होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस होते हैं, वो बच्चों को डालना चाहिए। फिर काउंसलर्स होते हैं, उनके थ्रू से बच्चों का डेवलपमेंट हो सकता है। फिर हमारे जैसे NLP मास्टर प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके थ्रू से हो सकता है। लेकिन एक प्रॉपर हेल्प चाहिए कि अगर देख रहे हैं कि बच्चे कॉन्टिन्यूसली ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो घर पे नहीं हो पा रहा है, तो एक प्रोफेशनल उनको हेल्प लेना चाहिए।
1: लेकिन बच्चों को रिजर्व टू सोशल बनाने के लिए पेरेंट्स उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं?
0: पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे ना स्कूल के टीचर्स से मिल के, उनसे बात करके, उनसे डिफरेंट टाइप के काउंसलिंग लेके

0: फिर वो भी इन्वॉल्व होंगे और फिर डिफरेंट टाइप के प्रोफेशनल हेल्प लेंगे।
1: एक श्रोता है हमारे साथ जो जुड़ना चाहते हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मैं उत्तराखंड से रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ। दोनों डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार।
3: नमस्कार ठाकुर साहब।
1: नमस्कार। जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: मेरा प्रश्न ये था, मैंने अपनी बिटिया के बारे में पूछना था।
1: जी बताइए।
2: जैसे मानसिक रूप का, उससे आज ये प्रोग्राम था, तो ये मानसिक होता है या ऐसा? जैसे बिटिया हमारी 24 साल की है, तो उससे पहले भी स्कूल से कि ये ऐसे हवा लग गई करके हो जाती थी, जैसा मोर्चित हो जाती थी, ये बेहोश टाइप की
3: जी।
2: या कभी कुछ जैसे डेथ केस हुए थे तो उसमें भी वो बेहोश हो जाती थी, जैसे कभी पूजा पाठ करती है तो कभी कभी उसमें उसको हो जाती है, बेहोश टाइप की हो जाती है कि तब मानते हैं ना ये घर का कोई ऐसा कुछ दोष हो या कुछ ऐसा, या कुछ हवा या कुछ ऐसा, तो ये मानसिक होता होगा या क्या होता होगा, इसका तो समझ में नहीं आया।
0: मैं बताती हूँ, ये दोष वोष कुछ नहीं होता है, ये जो अफेक्ट होता है, शॉक मिलता है किसी की डेथ के वजह से, वो माइंड में चलता रहता है। जितना माइंड में चलेगा वो उतना ही दिखता, बड़ा बड़ा दिखता रहेगा। तो आपकी बेटी को थोड़ा प्रोफेशनल हेल्प चाहिए इस वक्त, ताकि वो इस चीज़ से निकल आए। जैसे ही वो निकल आएंगे फिर वो घर के माहौल में फिर संभल जाएंगे, बट अभी के लिए आपकी बेटी को थोड़ा सा डॉक्टर का या किसी का, काउंसलर का, साइकोनोरोबिक्स होए या साइकोपैथ्स होए, उनसे हेल्प चाहिए।
1: इस पर किया जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे कई बार होते हैं कि स्कूल में पढ़ाई का लोड हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, कुछ बच्चे होते हैं वो इमिडिएटली हैंडल कर लेते हैं।
0: हाँ जी।
1: कुछ होते हैं उसको एक दिन सोचते रहेंगे, कुछ होगा हफ्ते भर सोचते रहेंगे, कुछ महीनों सोचते रहेंगे।
0: हाँ जी।
1: उसकी वजह से वो चीज सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पाती, ना ही उसका रिजल्ट मिल पाता।
0: नहीं।
1: तो ऐसे में तो उन अलग अलग बच्चों के हिसाब से क्या करना चाहिए?
0: देखिए, कुछ तो अपने में ही होता है, कुछ तो तूफानी बच्चे होते हैं, कुछ स्लो डेवलपमेंट करते हैं, तो वो बच्चे टू बच्चे डिफर करते हैं। लेकिन हम उन बच्चों को डिफरेंट, जैसे कि स्पेशल क्लासेस के थ्रू टीचर्स उनको हेल्प करेंगे, और माँ बाप को चाहिए कि टीचर से बात करके, उनसे काउंसलिंग करके उन बच्चों को नॉर्मलाइज किया जाए। जैसे ही करेंगे तो देखेंगे कि बच्चे ठीक हो रहे हैं और नॉर्मल रिजल्ट्स आने लगे।
1: इस पे डॉक्टर तोमर आप क्या कहेंगे?
3: मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इसमें कि देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है और हर किसी के पास ना तो साइकेटिस्ट है ना ही डॉक्टर्स हैं, बल्कि आप देखें छोटे शहरों में, तो हमें बेसिक किसी भी चीज़ के लिए, समाज को चलाने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। ये सारी चीज़ें आज मछली हो रही है क्योंकि हम लोगों ने वो जो हमारा पुराना कंसेप्ट था वो खो दिया। तो बच्चों को हमें एक सोशल लाइफ में करना है, जैसे कहते हैं बच्चा, कुछ बच्चे बहुत वो होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत से बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें बचपन से बच्चों को सिखानी है। जैसे बच्चा होता है अपने परिवार में, दादा दादी नाना नानी भाई बहन जितने भी हैं उन सबसे मिलवाइए, उनसे बात कराइए, बच्चा अपने आप ही होने लगेगा। दूसरी चीज़, जैसे कि बहुत से बच्चे प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाते, हम सब कुछ बच्चे को सिखा देते हैं, ये खा लो, वो खा लो, ऐसे कर लो, पढ़ाई कर लो, लेकिन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है ये हम लोग बच्चों को नहीं सिखाते।
0: कि डिफरेंट स्पून फीडिंग करते
3: हैं। यस, स्पून फीडिंग नहीं करना है बच्चे को, अपने आप, इसको नर्चरिंग केयर कहते हैं बेसिकली हम, कि बच्चे को इनिशियली 5 ईयर्स तक तो एक्सपीरियंस करने दीजिए, उससे बच्चे को सीखने दीजिए, आप कुछ मत सिखाइए। आपने देखा होगा बेंगलोर में एक इंसिडेंस हुआ था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा बच्चा था, शादी के बाद सुसाइड कर लिया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने बच्चों को कैसे हैंडल करना है, इमोशनल प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, सोशल प्रॉब्लम कैसे हैंडल करना है, इन चीज़ों पर बच्चे को तैयार नहीं किया। तो बच्चे को संस्कार से केवल एजुकेशन नहीं देना है आपको, बल्कि इन सब चीज़ों के लिए भी तैयार करना है कि हाउ टू हैंडल द डिफरेंट सिचुएशंस।
0: कभी कभी हैंडल मतलब जो होता है ना, उसी सिचुएशन को हम सिखाए नहीं सकते हैं, वो अपने आप ही हैंडल करना होता है, और वो शुरुआत ही होता है नींव से। अगर नींव मजबूत होए तो वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर सकेगा।
1: लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेते हैं, उनको अगर थोड़ा सा भी काम होगा तो उनको स्ट्रेस हो जाता है, जिसके कारण वो नहीं कर पाते।
0: सब
1: तो हाँ किया जी, वो कैसे करे? कि क्योंकि बच्चों को बचपन से देखा जाए तो स्कूल भी जाना है, उनको खेलना भी है, उनके पास अपने ही बहुत काम है, तो वो हर चीज को आराम से हैंडल कर ले। उसके लिए क्या करे, पेरेंट्स क्या करे और बच्चे क्या करे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
4: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
4: नमस्कार, मैं यशपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
4: मैडम, सवाल ये है कि अगर आजकल के जो मदर है वो उनका खुद का ही लाइफ स्टाइल थोड़ा ऐसे ही है, डिसिप्लिन नहीं है, ना हेल्थी हाइजीन का है, बच्चा भी अगर देर से उठता है और देर से सोता है तो मतलब बच्चा भी है, मतलब ब्रेस्ट फीड पे भी है, तो क्या बच्चे पर क्या इम्पैक्ट?

0: है बच्चे आजकल की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन जो यंग मदर्स एंड फादर है, अब ये कि वो बड़ों की एडवाइस पे तो उनका कोई वो लेती नहीं है, मतलब दे डिपेंड ऑन इंस्टा रील्स पता नहीं कहाँ कहाँ से एडवाइस ले लेते हैं वो,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो ये मतलब बच्चे के लिए कितना मतलब डेवलपमेंट में मतलब बाधा कर सकता है। थैंक यू।
2: जी। पहले डॉक्टर तो मैं आप बताइए कि फिजिकल
1: देखिए,
2: डेवलपमेंट पे कैसे बाधा करेगा।
1: दो चीज़ हैं सर, आपने जो बताया है कि पहले तो ये कि माँ है आजकल रील देखती हैं या इंस्टा पे है, तो एक चीज़ है हमारे यहाँ समाज में कभी भी पहले ये बैन हुआ करता था कि कोई भी किसी भी टॉपिक पर एडवाइज नहीं दे सकता, लेकिन अब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जब से आई है तब से कोई भी कुछ भी किसी भी चीज़ पे ज्ञान देने के लिए रील बना लेता है, उसे कभी भी फॉलो निकलना है, खासकर हेल्थ के बारे में आपको बिना एक्सपर्ट के सलाह के नहीं लेनी है। जो माँ है वो भी किसी का बच्चा रहा होगा, तो जब हम समाज को इस तरीके से तैयार करेंगे, अच्छे वैल्यूज देंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो भी कल को जाकर के माँ बनेगी तो उसको डेफिनेटली वो पता रहेगा। और जहाँ तक स्क्रीन का टाइम है, बच्चों की हेल्थ पर असर तो पड़ता ही है। प्रॉपर स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नींद अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है, बच्चे की भी नींद पूरी नहीं हो रही है, और लाइफ साइकिल इज़ इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप 2 बजे सो के और 10 बजे उठ रहे हैं तो आपका हेल्दी स्लीपिंग हो गया, ये नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्लीपिंग पैटर्न एग्जैक्टली वैसे ही होना चाहिए जैसे कि पहले होता था। जो लाइफ है हमारी वो सन के अराउंड मूव करती है, हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स के लेवल हैं वो उसी के हिसाब से अप एंड डाउन होते हैं, तो आपको वो लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करनी है।
2: इस पर क्या जी, आप क्या कहेंगी?
3: हाँ बिल्कुल, मैं भी यही बोलने वाली थी
1: जी
3: डॉक्टर साहब जी जो बोला कि ये बच्चे आजकल टाइम से नहीं सोते हैं और बहुत रात तक लैपटॉप पे काम करते हैं। इससे क्या होता है, जो वो ब्लू लाइट्स आती है आँखों में स्क्रीन से, वो आपके सर्कैडियन साइकिल को अफेक्ट करता है। सर्कैडियन साइकिल क्या है? सोना और जगने का साइकिल। अब जब बच्चा 4 बजे सो रहा है, सपोज रात के 4 बजे सो रहा है, तो सुबह उठते हुए मुश्किल होगी, और जैसे ही मुश्किल होगी सुबह उठते हुए उसको नींद नींद ड्राउजीनेस फील होगा थ्रू आउट द डे, बट उसको कॉलेज भी जाना है, स्कूल भी जाना है, काम तो करना है, तो ओवर द पीरियड वो सुस्त बनता जाएगा, लेजी लथार्जी आता जाएगा। तो ये माँ बाप को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना है कि बच्चे तुम टाइम से सोओगे, टाइम से खाओगे, पहले जमाने के तरह, तो ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करेंगे तो ही बच्चे ठीक हो पाएंगे। तो माँ बाप पे फिर आ जाता है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की आजकल बहुत ज़रूरी है। और इंस्टा पे तो आजकल सारे टाइप के रील्स ऐसे होते हैं कि एडिक्शन हो जाती है।
1: बिल्कुल
2: जी। इसी पर एक मैसेज भी हमारे पास, ये लिखते हैं, सभी को मेरा प्रणाम। प्रेगनेंसी के दौरान माँ के लिए हेल्दी डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए जिससे कि माँ एवं बच्चा दोनों स्वस्थ रहे? हेमचंद्र भट्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य, उत्तराखंड।
1: देखिए सर, लाइफ को चलाने के लिए आपको कोई डाइट चैट की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे कल्चर में था, आपको सबको पता होता कि हेल्दी फूड क्या होता है। स्वस्थ खाना खिलाइए, अच्छा खाना खिलाइए, नेचुरल खिलाइएगा, प्रोसेस फूड नहीं देना है, जंक फूड नहीं देना है, और जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल सब्जियां हैं, वो अच्छे से खिलाइएगा, और मानसिक रूप से उनको जो है सपोर्ट कीजिएगा, तो आपका बच्चा हेल्दी होगा।
2: एक और मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, अगर बच्चे घर पर तो दंगा करते हैं लेकिन बाहर जाकर और ज़्यादा दंगा करते हैं और डिमांड करते हैं मोबाइल दो, इसके लिए क्या किया जाए? प्लीज़ कृपया निर्देशित करें। कि हाजी क्या कहेंगे? ये लिखा है डॉक्टर शिवराज सिंह ने।
3: बच्चे की उम्र क्या है ये बहुत ज़रूरी है,
2: ये उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो अगर हम ले, ये बच्चा है तो मेरे ख्याल से 10
1: डेफिनेटली बच्चा
2: कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई भी हो सकता है,
3: क्योंकि ज़्यादा छोटे बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दे, ये स्ट्रिक्टली
2: कह रहे हैं कि दंगा करते हैं और बाहर जाके हॉर करते हैं।
3: हाँ, तो उनके जिद पे ना आए ना, यही तो है पेरेंटिंग।
1: बच्चे को जो है आपको शुरू से ही कंट्रोल करके चल रहा है, और इस वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि बच्चे को आपको पैम्पर नहीं करना है, आप बच्चे को संस्कार दे रहे। एक सिंपल सी, एक छोटी सी, आपको हमेशा याद रखनी बच्चों के मामले में कि बच्चा आपका कच्ची मिट्टी होता है,
3: ठीक,
1: और आप जो है कुंभकार हैं, आप कैसा शेप देना चाहते हैं, कहाँ आपको अपने हाथ को टाइट करना है, कहाँ आपके हाथ को लूज करना है, कितना सुंदर शेप आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। आजकल उल्टा हो गया है, पेरेंट्स कच्ची मिट्टी हो गए हैं,
3: ठीक,
1: बच्चे उसको मोल्ड कर रहे हैं, जिद किया तो वो तो बच्चा आपका एडिक्टेड हो चुका है। बहुत से बड़े अडल्ट होते हैं वो ड्रग्स के लिए जिद करते हैं, कोई ड्रिंक के लिए जिद करता है, तो अल्टीमेटली आपको समझना होगा।
2: पेरेंट्स जहाँ इतना बिजी रहते हैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, तो हफ्ते में एक दिन क्या उनको बच्चों के साथ बिताना चाहिए? उनके साथ प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एक्टिविटी करना चाहिए, ये कितना ज़रूरी है शारीरिक विकास के लिए? डॉक्टर तोमर आप बताइए।
1: देखिए, अक्सर ये बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है, और बहुत परेशान होते हैं अक्सर मम्मियाँ, तो उसके लिए सिंपल है कि जब भी आप बच्चों को खाना खाते हैं, आप जो खाना खा रहे हैं वही बच्चों को खिलाना है।

0: और अक्सर फैमिली फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बिल्कुल डिजिटल फ्री एरिया होना चाहिए जिसमें आपको बच्चे के साथ बैठ के खाना खाना है। चलते चलते मैं एक आपको बड़ा छोटा सा मंत्र देकर जाता हूँ कि एक परिवार होता है, परिवार सुखी कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे, तो उसके लिए हमारे बहुत पहले से एक कंसेप्ट हुआ करता है परिवार के लिए क्या जरूरी है कि यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमंत्रित तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ सुख समृद्धि आती है, उसका मतलब ये है। तो घर में जो आपके लेडीज हैं, जो महिलाएँ हैं, बच्चों की माँ हैं, दादी हैं, आप उनको प्रॉपर इज्जत देंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, झगड़े कम होंगे, खुशियां रहेंगे और सब स्वस्थ रहेंगे।
1: और क्या जी, आप क्या मैसेज देंगी जाते जाते हमारे श्रोताओं को, जिससे कि पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है और बच्चों के लिए, जिससे उनका मानसिक विकास सही ढंग से हो?
2: हाँ जी, बच्चों के लिए है कि बच्चे जो माँ बाप बोले वो करें, और पेरेंट्स के लिए है कि बच्चों को एक्सेप्ट करें अनकंडीशनल, उनकी सुने, उनके साथ रहें, उनके साथ समय व्यतीत करें, उनके साथ साथ सारे कार्य करें ताकि बच्चे भी खुश रहे। और जादू की छप्पी बहुत ज़रूरी है।
1: जी हाँ, इसे ही कहते हैं फैमिली बॉन्ड। अगर फैमिली बॉन्ड अच्छा होगा, आपस में प्यार होगा, तो सब आपस में खुश रहेंगे। श्रोताओं, अगर परिवार में संवाद, समानता और सहयोग हो तो हर बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होकर आगे बढ़ सकता है। बच्चों का बेहतर कल एक बेहतर परिवार से शुरू होता है। आज रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ रहे हमारे दोनों विशिष्ट अतिथियों डॉक्टर MS तोमर और केया चटर्जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जागरूकता ही बेहतर स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है, और यही संदेश लेकर आता है आपका अपना कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर रूबरू होंगे नए विषय के साथ। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: हाँ जी दोस्तों जी, मैं तड़ अपना आरजे दोस्त रमनीश से प्रोग्राम चल रहा है हेलो जलंधर शुरू हो चुका है। हेलो जलंधर यानी कि बहुत सारे डाउट लेके मैं हाजिर हाँ, पहले साढ़े स्रोते एंट्री कराई जाए। हेलो
1: हेलो
0: सर जी, सत श्रीकाल जी। हाँ जी सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल। की हाल ने ठीक हो जाता बंदा, मेरी गल का जवाब दवो तुम जी पुछ लगा मैं। हेलो किते गवाच के सनी जी। हेलो मैं कह सनी जी। हेलो कोई गल नहीं, लगता मेरी सवाल तो डर गए पहले ही। वैसे कोई गल नहीं, देखो जी मैं सवाल पूछ लगा सी ना, ये तो मैंने अचानक पता लग गया तो सनी जी का फोन कट हो गया, नहीं तो असी तो मतलब सवाल कर देना सी तो अगले स्रोते ने जवाब दे देना सी। कोई चक्कर नहीं, आप नवे स्रोते की वेट कर लें, कोई चक्कर नहीं है, इधर ही कोई गल ही है नहीं जी। हैलो हैलो जवाब दो। वैसे मैं एक प्रॉब्लम च फस गया, मेरे एक मन च डाउट आया हो। वैसे बांदर दिखना बंद हो जाना थानू पता। जवाब पसंद आ, मतलब पता कि लगता कि पसंद है बंदर नू केले। छिलका भी छिलना आंदा, छिलका छिलदे आ फिर केला खांदे, इन्नी प्रैक्टिस हो गई है।
1: सियाने
0: हदवाणा खान च किते सियाने नहीं होंदे। मतलब बंदर नू केले पसंद आ, फेवरेट आ, एदा जे इंसान केले खावे मतलब बंदर है। कहने मतलब बंदर बंदा ही बंदर है। असि की है, असि की है, असि दोनों। मैं क्या जी असी दोनों की हैं, कोई चक्कर नहीं असी दोनों इंसान हैं। वैसे फिलहाल साढ़े जरूरत फोन कर चुके ने ते उन्होंने जवाब सानू ठीक लगा, अच्छा लगा कि हाँ बंदर नू केले पसंद होंदे ने तां करके वह केले खाते हैं। पर तुसीं भी जरूरत हो अगली कॉल च मैनू दस सकते हो कि हदवाणा क्यों नहीं खाते। वैलो तो पहले एक सोहना जिहा गाना ला दिता जाए तो मैं अपने कॉलर की वेट कर रहा, तो जरूर उन्होंने मैं अपने डाउट रखूंगा उन्होंने सामने जी।

0: हाँ जी दोस्तों, तो ही सुन रहे प्रोग्राम हेलो जलंधर। तो मैं थोड़ा अपना आरजी दोस्त रमनीश। तिंगलिंगी तिंगी तिंगी लिंगी लिंगी लिंगी लिंगी। हेलो जी।
1: हेलो।
0: हाँ जी सत श्री अकाल साडे सरोते, सरप्राइज तुसी ऑन एयर हो।
1: हाँ जी सत श्री अकाल जी, मैं रविंदर कुमार कैंबो बोल रहा जी, गुराया से।
0: अच्छा जी, ठीक है जी। कैंबो बोलते? कैंबो
1: जी।
0: अच्छा जी, कैंबो को कहते थानू, ये दसो पहला जी। हसना बंद है जी। अवेल जी पता की होंगे जी, री हों ह च ना इधर ही आवाज आती ना, हाँ मैं मोहरे सुन गया जी, इंदर पहला बाद चो सुन गया, मैं तान लगा जी। कोई चक्कर नहीं,
1: हवा भर जाती है अजकल, वैसे भी हवा ज्यादा चलती है ना।
0: अच्छा जी,
1: माड़े जी अखर इधर उधर हो जाते, कोई गल नहीं।
0: सही कह जी, तो मेरी हवा तुहानू पहुंच जूगी, तुहाडी हवा मेरे तक बिल्कुल नहीं पहुंचूगी। हाँ जी कहीं ना हंस लो खोल के, कोई चक्कर नहीं है जी। थोड़ा हंस, थोड़ा थोड़ा खोले है ना, थोड़ा होर अपना हो जाए रविंदर जी। ठीक है जी, कोई ना, ठीक है, नॉट बैड नॉट बैड। अच्छा चलो, मैनू रविंदर जी, मेरे ना एक दिमाग च ना इंटरेस्टिंग डाउट फसया है
1: जी। जी बिल्कुल।
0: डाउट मेरा यह है जी कि अपना की कहते इनू, जरा आप गुआढ़ी घर जरा सी कूड़ा सिट देने होंगे ना
1: जी,
0: वह कभी तुम सिटिया जी? कभी मैमरी चेते हो, शरारत ची सिटता हो, इदा हो ना जी, कभी किया इदा?
1: ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹ।
0: ਆਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ।
1: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਉਹ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹ।
0: ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਹਵਾ ਨਾ ਵੀ
1: ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੱਕ ਹੀ ਦਊਂਗੇ ਕੂੜਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ।
0: ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾ ਕੱਢੀ ਜੀ, ਮਾ ਮਜਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ,
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਚਲੋ।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल ते तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी एंड लव यू जिंदगी च थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ते मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। वेल दोस्तों यू नो लव यू जिंदगी की है ओ थान दस दें बिल्कुल दस दें दोस्तों। सब तो पहला सत श्री अकाल मेरे प्यारे सारे दोस्तों नू साथियों नू। ते कहंदे ना जिंदगी एक ऐसा सफर है जो हर रोज सानू कुछ ना कुछ सिखा जाती है। कदे हसाउंदी है, कदे रवाउंदी है, कदे थका दिंदी है, पर फिर भी असी कहिंदे ना सवेर दी नवी आस नाल जिहड़ी है सानू ये जगा भी दिंदी है। तुसीं सोचदे होंगे तां बिल्कुल गल सच है दोस्तों। ते दोस्तों कहिंदे ना पर फिर भी एक सवेर नवा आस नाल जिहड़ी जगा तां दिंदी है, पर इस सफर नू मुस्कान नाल कबूल करन दा नाम ही है लव यू जिंदगी दोस्तों। कहिंदे जिंदगी हमेशा साडी मर्जी मुताबिक नहीं चलती दोस्तों, पर यह जरूर साडी सोच के मुताबिक सोहनी बन सकती है। कई बार असी छोटिया गल्लां विच उलझ के ना वड्डी खुशी गवा लैंदे हाँ, तो कई बार एक छोटी मुस्कान सारा दिन सोहना कर जाती है। लव यू जिंदगी सानू यही सिखाती है कि याद दिलाती है कि खुश रहने लई वड्डे कारण नहीं सही नज़रिया चाहिदा है। इशो उन्हां लई है जो हार के भी मुस्कुराउणा जाणदे ने, जो टुट के भी अपने आप नूं जोड़ लैंदे ने, उन्हां लई जो अज थके होए ने पर कल तो फिर उम्मीद रखते हैं, क्योंकि जिंदगी दा जिहड़ा सब तो वड्डा हुनर ही है हर हालात विच अपने आप नाल खड़ा रहना। जिंदगी पूरन नहीं हुंदी, पर हर दिन सानू पूरा बनण दा जिहड़ा है मौका दिंदी है। कदे चाह दी इक चुस्की विच सकून मिल जांदा है, कदे किसी अपने की आवाज विच मिल जाता है, कदे पुराना गीत दिल नूं छू लैंदा है, ते कदे खामोशी सब कुछ कह जांदी है। वैल दोस्तों गल्लां दा सिलसिला अगे वधाउने आं, ते पर उस तो पहला एक सोहना जिहा गाणा। ते अज बहुत सारे टॉपिक से गल करांगे, बहुत सारे टॉपिक इसलिए हो लगे जो कि साडे शो दा नाम है लव यू जिंदगी। दैन असी अज लव यू जिंदगी नूं एक्सप्लेन करूंगे, लाइक लव उस तो बाद आंदा यू दैन जिंदगी। पर उस तो पहला एक सोहना या प्यारा गाना तुहाडे सामने पेश कर दा दोस्तों।

दोस्तों तुसी सुन रहे प्रोग्राम लव यू जिंदगी ते प्यार दी गल चल रही दोस्तों। कहिंदे ने प्यार सिर्फ चार अखरां दा जिहड़ा है शब्द नहीं है, एक ब्रह्मांड है। कहना मतलब पंजाबी फलसफे विच प्यार नूं ना इश्क कहा गया है, जिस दा मतलब है अपने आप नूं मिटा के दूजे विच जीणा। गुरुआं सूफियां ते लोक कवियां ने प्यार नूं रूह दी खुराक मन्ने है दोस्तों। गल करदे कि पहला पॉइंट है मेरे को, एक प्यार मंगदा नहीं देंदा है। असी अक्सर कहिंदे हाँ कि मैनू प्यार चाहिदा है, पर असल विच प्यार लैण दी बजाय ना देन विच है। माँ दा अपने बच्चे नाल प्यार वेखो, ओह बदले विच कुछ नहीं मंगदी, यही निष्काम प्यार है। बुल्ले शाह कहिंदे हन कि इश्क दा जिहड़ा दावा करे सो पहलां अपने आप बारे। भाव जदों तक कहिंदे ना ह्यूमे नहीं मरदी, प्यार पूरा नहीं हुंदा। अज दे रिश्ते विच भी दुख इस करके ही है कि असी तकड़ी लै के बैठ जांदे हाँ, मैं इन्ना किता तू की किता। दूजी गल है कि प्यार आज़ादी है, कैद नहीं है। लोग सोचते हैं कि प्यार का मतलब है बन लेना, पर सच्चा प्यार ना पंछी नू पिंजरे विच नहीं आसमान विच देख के खुश हुंदा है। जे तुसी किसे नू प्यार करते हो ना तो उसनू अपना बनाउण दी बजाय ना उसनू खुद बनन दिओ। जिसने प्यार किता उसने रब पा लिया, क्योंकि प्यार ही रब है ते रब कदे किसे नू बनना नहीं है दोस्तों। तीसरी गल है कि प्यार दर्द भी है दवा भी है। हीर रांझा सोहनी महिवाल सस्सी पुन्नू पंजाबी दीआं इह कहानियां दसदियां हन कि प्यार सौखा नहीं है, इस विच विछोड़ा है, इम्तिहान है, पर यही दर्द इंसान नूं हीरा बनाउंदा है। सूफी कहिंदे हन कि जदों दिल टुटदा है

दोस्तों प्रोग्राम चल रहे लव यू जिंदगी दे मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीत ते तुसी सुन रहे एफएम बैंड 102.7। दोस्तों वेला हो चुका है हुन प्रादेशिक खबरां दा ते कुछ ही पला विच तुसी हुन सुनोगे प्रादेशिक खबरां 6:20 ते उस तो बाद असी इस प्रोग्राम नू कंटिन्यू रखांगे अगे गलबात करांगे दोस्तों।

दोस्तों, तो इस सुन रहे प्रोग्राम लव यू जिंदगी ते मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। दोस्तों, गल चल रही है लव यू जिंदगी दे। लव दी गल असी कल ही हुण असी गल करांगे यू यानी कि तू। तू शब्द दा फलसफा, तू सिर्फ एक कहिंदे ना सर्वनाम नहीं, यह रिश्ते अपणत अते होद दा शीशा है। पंजाबी फलसफे विच तू दा मतलब सिर्फ दूजे नूं संबंधन करना नहीं, सगो अपने आप नूं पछाणना है। तू ही मैं दा पता दिंदा है। मेरे पहला पॉइंट यही है कि तू ही मैं दा पता दिंदा है। बुल्ले शाह पुछदे हन कि बुल्लिया की जाना मैं कौन, जवाब भी खुद देंदे हन, ना मैं मोमण विच मसीतां, ना मैं विच कुफर दियां रीतां। असी मैनू उदों ही समझदे हाँ जदों सामने कोई तूं खड़ा हुंदा है। बच्चा पहला मां बोलदा है, फिर मैं बोलदा है, भाव दूजे ही होंद ही साडी होंद नूं अर्थ दिंदी है। जे तूं ना होवे तां मैं किस नूं सुनावां, किस लई जीवां। दूसरी गल है कि तूं दियां तीन सरूतां वी हुंदियां है, सूरतां वी हुंदियां है। पंजाबी सभ्याचार विच तूं तीन रूपां विच आउंदा है। पहला रब, तू साहेब मैं सारा तेरा, एथे तू समर्पण। दूजा महबूब, तू मेरी हीर मैं तेरा रांझा, एथे तू इश्क है। तीजा है विरोधी, तू कौन होना मैनू रोकण वाला, एथे तू टक्कर है। भाव तू साडे अंदर भगती भी जगाउंदा है, प्यार भी अते विद्रोह भी। अथवा कहिंदे ने कि तू तो असी तक दा सफर। कहिंदे ने दोस्तों, जो तो मैं ते तू अपनी हुयुमे विच छड देंदे हन ना, तां असी बन जांदा है। इस यानी कि यही जिंदगी दा सार है कि असी अपने आप ही अक्स देखन लग जाइए तां नफरत खत्म हो जांदी है। इस सिट्टा है कि तू शब्द सानू सिखाउंदा है कि असी कल्ले नहीं, हर रिश्ता, हर टकरा, हर इबादत तू दे दुआले घूमदी है। जिस दिन असी दूजे ते तू विच रब वेखन लग पए, उस दिन मैं दी लड़ाई मुक जा।

नमस्कार, राधे बजगने 8 ते पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज जनतक वंड प्रणाली अधीन राशन आवाजाई और प्रबंधन सहायता लई योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने को प्रवानगी दी है। सर्वोच्च अदालत ने आज चोण कमिशन वालों करवाई गई वोटर सूचियां की विशेष तीव्र सोध SIR की प्रक्रिया की वैधता बरकरार रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों देश के वख-वख हिस्सों के बढ़ रहे तापमान के मद्देनज़र लोगों को सावधानी वरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में कल लू चलन तो बाद मौसम च तब्दीली की पेशीनगोई की है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री वरिंदर कुमार गोयल ने बीते दिनी व्याह समागम दौरान खाना खाण पिछों बीमार हुए व्यक्तियों को सिविल हस्पताल मूनक च दिते जा रहे इलाज का जायजा लिया। मंत्री ने अधिकारियों को सारे प्रभावित व्यक्तियों लई तुरंत इलाज यकीनी बनाने के निर्देश दिते ने। कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने संबंधित अधिकारियों को सबका सैनिकों लिए रुजगार और बेहतर मौके प्रदान करने के निर्देश दिते ने। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 प्रीख्या पेपर लीक मामले के 3 होर मुलजमान गिरफ़्तार किया। भारतीय फौज ने हवाई सेना ते होर स्थानक एजेंसियों नाल तालमेल करके कसौली के पछमी ढलाणा विच लगी एक वड्डी जंगल की अग ते काबू पाया। प्रसिद्ध निशानेबाज 5 बार ते ओलंपियन ते भारतीय ओलंपिक्स एसोसीएशन दे साबका ऑनरेरी जनरल सकत्तर राजा रणधीर सिंह दा अज लंबी बीमारी तो बाद देहांत हो गया। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सरहद पारों गैर कानूनी हथियारों की तस्करी

बहुत सारी यादगार फिल्मां जिवें दिल, बेटा हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है। 90 दे दशक दे विच बहुत सारियां फीमेल स्टार्स दे नाल इन्हां दे जो मुकाबले जिहड़े सन जुड़े जांदे सी, पर अज भी इन्हां दा बॉलीवुड इंडस्ट्री दे विच लोहा जिहड़ा है वह मन्निया जांदा है। सो इन्हां ने बहुत सारियां यादगार फिल्मां जिवें 1999 दे विच, मतलब नाम मेरा सामने अजे भी आ रहा, मैं विच विच रुक रहा, मैं सोच रहा कि रिवील कर दें, पर हमें सोच रहा सस्पेंस बना के रखा। विआह तो बाद इन्होंने फिल्मों तो दूरी बना ली, हालांकि फैंस का प्यार इन्हों दोबारा फिल्मों के लैके आता है। इन्हों को फिल्म आती है आजा नचला, देवदास चंद्रमुखी का इन्हों का करैक्टर होंगे, बिल्कुल मेरे ख्याल तुम समझ गए होंगे। हूँ मेरे ख्याल थानू दसना जरूरी बन जाता है, क्योंकि उस तो बाद दसन होर कुछ रह नहीं जाता। जी हाँ, इन्होंने अगे जो तुम सोच रहे हो गए ना, मैं हले भी नहीं दसूँगा। इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के काम करने तो इलावा डांस भी सिखाया, एंड उस तो इलावा जो डांस के रियलिटी शोज़ ने उस दे विच बतौर जज के तौर पर भी काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं गल कर रहा हाँ सारिया की चहेती, सारिया के प्यारे, सारिया जो एंटरटेन करते रहे हैं धक धक गर्ल। जी हाँ, माधुरी दीक्षित जी के बारे। हाँ जी, वन एंड ओनली नन अनदर अदन माधुरी दीक्षित जी, उन्होंने बारे असी गलबात की, इनफॉर्मेशन इन्होंने बारे शेयर की, एंड वेरिएशंस ने इनफॉर्मेशन दी अज मेरे को। इस तो बाद भी बहुत कुछ लैके आ रहा, तद तक लिए बने रहो मेरे नाल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर के उत्ते।

नमस्कार। 102.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। कार्यक्रम शुरू हो चुका है शामे गजल। कहते हैं कि हजार दर्द शबे आरजू की राह में है, कोई ठिकाना बताओ कि काफिला उतरे करीब और भी आओ कि शौके दीद मिटे। नगमे और सुनाओ कि कुछ और नशा उतरे। 102.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल शामे गजल।

कहते हैं कि कोई सबब से अगर बोलता, किसी सबब से अगर बोलता नहीं हूँ मैं, तो यूँ नहीं कि तुझे सोचता नहीं हूँ मैं। कहते हैं कि कई बार होता है कि बहुत बार चाहत अधूरी रह जाती है, या आप जिसको चाहते हो उससे मुलाकात अधूरी रह जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि सिर्फ चाहत ही रह जाती है। काश अगर मुलाकात हो जाती, काश यदि उनसे हमने कुछ बात की होती, तो आज कुछ बात और होती। सिर्फ आंखों से बातें होती रहीं, फिर वो आंखों से ही ओझल हो गए, फिर उसके बाद मुलाकात का वक्त ही नहीं लगा। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल, शाम गज़ल।

कहते हैं कि हजार तरह के थे रंज पिछले मौसम में, हजार तरह के रंज पिछले मौसम में थे, पर इतना था कि कोई साथ रोने वाला था। कई बार कुछ वो लम्हे वो जज्बात गुजर जाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता था। वक्त पे आप कुछ और करना चाहते हैं और वक्त आपसे कुछ और करवा देता है, और सामने जो होता है हम उसे पहचान नहीं पाते, और अक्सर यही कहा जाता है कि जो किस्मत में हो वही प्राप्त है, वही पर्याप्त है। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल शाम गजल।

कहते हैं कि जहाँ एक शख्स मिलता नहीं है चाहने से, वहाँ ये दिल हथेली पर जमाना चाहता है। कई बार आप बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं या बहुत कुछ पाने की चाहत रखते हैं, और आप ये सोचते हैं कि और आपकी तमन्ना पूरी हो जाएगी। कई बार तो ये सच साबित हो जाता है, पर हर बार नहीं हो पाता। और तमन्ना पूरी हो और ज़िंदगी में पूरी ना हो, अक्सर ये देखने को मिलता है। और कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही होती हैं जो ज़िंदगी जीने का हमें सबब देती।

नमस्कार। रात के 10:30 हो चुके हैं और कार्यक्रम आपने ट्यून किया हुआ है 102.7 मेगाहर्ट्ज़ तक आकाशवाणी जालंधर का चैनल और कार्यक्रम शुरू हो चुका है। एक प्यार का नगमा है। कहते हैं कि हमने उन्हें कितनी बार चाहा और कहते हैं कि बेवफा से दिल लगा के रो पड़े, दिल पे हम एक चोट खा कर रो पड़े। जिसने पूछा हमसे बिछड़े यार का, उसको सीने से लगा कर रो पड़े। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल कार्यक्रम चल रहा है। एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि जब से तूने दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक प्यार का नगमा है।

कोई समझे तो एक बात कहूँ, कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि अपनी ना अपनी ना अपनी ही वफा याद, अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद। कहते हैं कि कौन सुधरा है सिर्फ समझाने से, जिंदगी में एक हादसा जरूरी है। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि चांदनी रात बड़ी देर बाद आई है, लब पे एक बात बड़ी देर बाद आई है, आज की रात वो आए बड़ी देर के बाद, आज की रात बड़ी देर बाद आई है, चांदनी रात बड़ी देर बाद आई है। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक प्यार का नगमा है।